0: देखे आप उनकी कि ही फेल्ट अनेबल टू रिफ्यूज देयर प्रपोजल्स क्योंकि वो उनको हर्ट या डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते थे तो उन्होंने तो मतलब शादी कर ली. अब बात ये है कि सारों के सारे चिक्किस हैं उनके नाम नहीं याद हो पाते तो वो ना एक डायरी में वो कहीं पे लिख के रखते हैं कि इनका नाम ये है इनका नाम ऐसे करके उनको चलाना पड़ रहा है. उनकी दिक्कत बहुत ज्यादा आ रही है आप समझने की कोशिश करें. करेंटली वो अपनी 3 पत्नियों और कई सारे बच्चों के साथ रहते हैं एंड अब वो जो है उनके साथ साथ बाहर जाकर जो है अपना काम वाम जो है वो भी बिल्कुल प्रोसीड करते हैं. बाकियों का क्या हुआ है हमें संवाददाता भेजने पड़ेंगे वहां पे जानने के लिए.
1: तो 21 मतलब 21 कंफर्म्ड है.
0: जी जी
1: याद रखना तो मुश्किल है ना. मैं इसकी प्रॉब्लम समझ रही हूँ यार. आई थिंक इट्स अ प्रैक्टिकल इशू. या मैं क्या बोलूँ इसके बारे में और क्या बोलूँ मैं. 21 शादियाँ
0: वही कह रहा हूँ. मासूम मर्द के बारे में क्या ही बोल सकते हैं. कौन ही क्या कर सकता है. बेचारा मना ही नहीं कर पा. देखो ना उसका वो देखो ना फीलिंग्स देखो. नहीं, दिल नहीं तोड़ पाया बेचारा.
1: सही बात है. बहुत अच्छा इंसान है. दिल का अच्छा इंसान है. दिल का
0: बहुत ही ज्यादा
1: दिल का.
2: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

0: listen to Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: आइए आइए हम आपको बताएंगे इस बार एक ऐसी खबर जो आपको लगेगा भाई मतलब छोटी सी चीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है. डेडिकेशन देखो डेडिकेशन सीरियसली स्पीकिंग रेडियो मसी 24/7 पर
2: क्रेजी दुनिया क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो
3: डेडिकेशन. तो आप हमारी भी देखें फ्राइडे और फ्राइडे हमारा जो ये है ऐसी ऐसी खबरें लाते रहते हैं आपको मतलब क्या बात है. हमारी डेडिकेशन को भी दाद दे दीजिए दाद
1: खुजली. अब क्या है कि एक 54 साल का इंसान कुमामोटो ठीक है कुमामोटो जापान में उसने क्या किया कि भाई उसके घर में एक कॉकरोच था ठीक है 2-3 साल पुरानी बात है. उसके घर में एक कॉकरोच था अपने अपार्टमेंट में और रात के टाइम अराउंड मिडनाइट मेरा वाला हाल हुआ होगा उसको कि भाई उसने पूरी पूरी बॉटल उठाई इंसेक्टिसाइड की और छिड़क दिया ठीक है जो मैं करती हूँ नॉर्मली. अब उस स्प्रे में देयर वाज सम फ्लेमेबल अल्कोहल एंड प्रोपेलेंट गैसेस जैसे कि प्रोपेन ब्यूटेन. अब वो जो फ्यूम्स उसके कमरे में हुई वो इग्नाइट हुई जैसे ही वो पहुंची एक हीटिंग सोर्स पे नियर हिज कुटात्सु. कुटात्सु इज सपोज टू बी अ ट्रेडिशनल जापानीज हीटेड टेबल. अब उसकी वजह से क्या हुआ कि पूरा पूरा घर पे एक मेजर एक्सप्लोजन हुआ. उससे बालकनी की विंडो जो है वो फूटी साथ ही में बर्न मार्क्स हुए नियर द टेबल एंड इट कॉज्ड माइनर इंजरीज टू द मैन. अब उसके बाद से गवर्नमेंट ने ये बोला है कि भाई एरोसोल इंसेक्टिसाइड्स जो है दे कैन इजीली कैच फायर और एक्सप्लोड अगर वो ऐसी किसी हीटेड वाली जगहों के सामने हो. तो बेसिकली पॉइंट ये है कि ही ब्लू अप हिज अपार्टमेंट जस्ट टू किल वन कॉकरोच. डेडिकेशन देखो क्यों भाई.
3: नहीं मैं समझ रही हूँ मतलब मैं को ये भी पूछना है मेरे को क्वेश्चन है क्योंकि आप कह रहे थे कि आप भी ऐसे ही करते कि पूरे उसी टाइम पे पूरे घर में आपने स्प्रे. फिर आप रहते कैसे उस घर में वो स्प्रे करने के बाद.
1: देख अगर तो मैं कभी रात को बाथरूम में जाऊं और मुझे वहां पे कोई ऐसी आवाज आ जाए कि भाई कुछ हाँ. तो है यहाँ पर ठीक है और मुझे वो हाँ. चीज दिख जाए तो या तो वो हाँ. चीज रहेगी या मैं रहूंगी उस घर में ठीक है.
3: तो मतलब आप वो करके उसको घर में बंद करके आप घर के बाहर हो गए.
1: नहीं फिर मैं उसको बाथरूम में मार मार के उसको पूरे पूरे स्प्रे करके मैं उस बाथरूम में नहीं जाऊंगी अगले 2 दिन तक जब तक कि उसकी लाश मिल नहीं जाएगी.
3: लाश नहीं मिल जाती.
1: लाश मिल जानी चाहिए. अगर लाश ना मिले ना तो मैंने उस बाथरूम को सील कर देना क्योंकि मैं नहीं जाऊंगी. सीरियसली बहुत टेंशन है मेरी ये वाली बहुत ज्यादा.

0: into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: ये इतना स्मूथली ये पूरा का पूरा हो गया ना कि मेरे को समझ भी नहीं आ रहा. चलो बताती हूँ.
2: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें, और हमारा ये
3: इसको आजकल स्मूथ चीजें समझ नहीं आती है. आई थिंक शी लाइक्स इट रफ गाइस, शी लव्स इट रफ. गुड मॉर्निंग, दिस इज मस्ती 24/7. बोलो बोलो.
1: ये सबके साथ है रेणुका. अच्छा आप सभी बताओ जो भी सुन रहे हो मुझे, जिंदगी में हर कुछ एकदम से सही सही चलने लगा, आपको शक नहीं होता कि बहुत ज्यादा कुछ अच्छा नहीं हो रहा है? लाइक व्हाट इज द इशू, लाइक ये दिस इज नॉट राइट. हाँ तो ऐसा ही है, कुछ ना कुछ ऐसा स्पाइसी होता रहना चाहिए. सो कंबोडिया की ये बात है, तो ये बंदी जो है 8th फ्लोर से, ठीक है, नीचे रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, 8th फ्लोर से नीचे गिरी, बट शी लैंडेड ऑन दिस मेटल रूफ एक नेबरिंग घर के, वहां पे जाके लैंड की, ठीक है. नाउ शी रिमेन्ड अनकॉन्शियस फॉर अराउंड 30 मिनट्स उस रूफ के ऊपर. फिर अपेरेंटली सो ये जितने भी सीसीटीवी वगैरह उधर से ये लोगों ने सारी पूरी कहानी निकाली, कहती है वो 30 मिनट तक बेहोश रही, फिर वो उठी, फिर उसने अपना फोन निकाला, करीबन 20-25 मिनट तक उसने डूम स्क्रॉलिंग की वहां पे बैठे बैठे छत के ऊपर.
3: ओके,
1: फिर वो उधर से नीचे उतरी और वो चली गई.
3: ओके ओके, सो उसने रियलाइज किया कि नहीं कि वो गिरी थी, या मतलब
1: आई हैव नो आईडिया. मैंने कहा ना कि इतना ज्यादा स्मूथ था कि आप 8th फ्लोर से नीचे लैंड करते हो, आप अनकॉन्शियस होते हो, उठते हो, अपना इंस्टाग्राम और ये सारा डूम स्क्रॉल करते हो 20-25 मिनट, और उसके बाद आप निकल जाते हो. आई मीन
3: भाई देखो, इंसान का फोकस नहीं हिलना चाहिए, फोकस नहीं हिलना चाहिए. रील्स देख रहे हो तो पूरे ऐसे घुस जाओ उसमें कि हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, रील ना छूटे, जान जाए पर रील ना जाए, है कि नहीं?
1: कैसा ये, तो ये बात करते के तो लगा कि ये एक और नशा नशा मुक्ति केंद्र इसके लिए भी खोलना पड़ेगा.
3: अगले दिन ये लगा होगा कि ये दर्द क्यों हो रहा है, ये टांग टूटी कब, क्या हुआ?

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: भाई ऐसा है कि जब तुम्हारा डिवोर्स हो रहा है और तुम एलिमनी के लिए लड़ाइयां कर रहे हो तो ना ऐसे ऐसे चोरों वाली हरकतों भी ना करो कि लूट लो दूसरे इंसान को. क्यों भाई? गुड मॉर्निंग.
2: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज.
3: This is Masti Madness.
1: Masti Madness पर रेनुका एंड अंथारा. और क्या कहती हैं अंथरा जी?
4: मैं ये कह रही हूँ कि आजकल तो ये जज साहब और साहिबाएं भी काफी जवाब देने लग गए हैं. जब उनको लगता है कि भाई तुम क्या ही बात कर रहे हो, मतलब तुमको क्यों चाहिए, तुम हाँ, कमा रहे हो,
1: वही तो
4: काहे को लेकर जा रहे हो.
1: इसी खबर की बात कर रही हूँ. कर्नाटका के हाई कोर्ट में जब एक औरत ने डिमांड करा 6,16,300 रुपए पर मंथ फॉर इंटरिम मेंटेनेंस या एलिमनी अपने एक्स हस्बैंड से, तो जज ने बोला कि इफ शी वांट्स टू स्पेंड लेट हर अर्न. मजा आ गया मुझे इस जज की बात देख के. मतलब कुछ औरतें कुछ सिचुएशंस में सोचती हैं कि भैया आप पति से अलग हो रहे हैं, लूट लो इसको, इसको ना निचोड़ लो, मतलब बड़े मजे आ जाएंगे. तो वाइफ के लॉयर ने बोला कि भाई उसको तो चाहिए 6,16,300 रुपए पर मंथ अंडर सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट. फिर उसने क्या बोला, क्यों चाहिए? तो 4 से 5 लाख तो उसके मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, नी जॉइंट पेन, फिजियोथेरेपी, फीवर, टेंशन एट्रिब्यूटेड टू द हस्बैंड्स नेग्लिजेंस. ठीक है, उसके अलावा 15,000 से 50,000 रुपए क्यों चाहिए? क्योंकि उसको बैंगल्स, चेन, सैंडल्स, वॉचेस, स्टिकर्स, कपड़े मैचिंग द हस्बैंड्स ब्रांडेड अटायर लाइक कैल्विन क्लाइन, और 60,000 उसको खाने के लिए चाहिए महीने के. ठीक है, तो जज ने बोला कि एक अकेला इंसान, ना तो उसके पास कोई बच्चा है, ना फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इतने पैसे अपने पे पर मंथ कैसे खर्च सकता है? मतलब सेक्शन 24 रीजनेबल सपोर्ट बोलता है, ये थोड़े कहता है कि तुम पिल पड़ो, मतलब है.
4: Oh God. But then this is such a sane ask. I mean, logic की बात है भाई. अगर तुमको तुम्हारे इतने खर्चे हैं, तो why do you want it from him?
1: तो हिल जाओ.
4: अपने
1: हाँ घुटने तुम्हारे दर्द होते हैं, तुमको फिजियोथेरेपी तुम्हें चाहिए, तो तूने ब्रांडेड कपड़े लेके क्या करना है? जाना तो तूने हॉस्पिटल ही है, या बैठे रहना है तुम्हें.

टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20। नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स।

0: एबी लेन का नाम आई एम श्योर कई सारे लोगों ने सुना होगा. ये काफी मतलब सोशल मीडिया स्टार टाइप है एंड अपने अफ्रीका के अपने नेटिव कपड़ों में वो काफी हिंदी एंड अलग अलग लैंग्वेजेस के कंटेंट बनाते हैं.
1: ओह अच्छा वैसे टाइप्स दैट टाइप्स
2: क्रेजी दुनिया क्रेजी खबरें और हमारा ये
1: नहीं तो मुझे नहीं पता था बट शुक्र है कि आपने मुझे आज बहुत एनलाइटन कर दिया. थैंक यू वेरी मच. रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है मस्ती मैडनेस.
0: भाई ये काफी काफी पॉपुलर है एज एन इन्फ्लुएंसर एंड काफी पुराने भी है इस एरिया में काफी मतलब उस तरह से. बट अभी आपने वो डिवोर्स वाली बात की तो मुझे इन्हीं का केस जो है याद आ गया. सो कैबी लेम जो है इन्होंने शादी की ठीक है वेंडी नाम की बंदी से. 6-7 महीने होंगे शादी करके ठीक है एंड उसने डिवोर्स मांगा. डिवोर्स के बाद उसने कहा कि बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी सच अ बिग नेम एंड ही वॉज अर्निंग क्वाइट अ लॉट एंड एवरीथिंग. उसने कहा कि अब तुम्हारी एलिमनी में एसेट्स जो है वो डिवाइड होनी चाहिए ठीक है. तुम्हारे आधे एसेट पे मेरा भी हक है. डिवोर्स के बाद ट्विस्ट तब आया जब रिपोर्ट्स पेश करी गई कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में दैट कैबी लेम खुद का ही ओन्स नो ही हैज नो पर्सनल एसेट्स. एवरी सिंगल थिंग was in his father's name.
1: Very smart. ये सारे के सारे करते हैं आजकल. जरा सा जब डिवोर्स होने वाला होता उससे पहले अपने घर वालों के नाम कर देते कि अब कुछ तरीका ही नहीं है कि कोई चुरा ले. But this has become a very regular thing. You just transfer all assets in somebody else's name. And मेरे पास कुछ है
0: and उल्टा बेचारी इसके साथ जो हुआ इसकी खुद की वर्थ कुछ $10 million की खुद की थी. इसने सोचा था कि इधर से और भी थोड़ा कुछ आ जाएगा. उधर तो हुआ नहीं. इनफैक्ट इसने उल्टा और उस पे केस कर दिया कि भाई अब तुम्हारे में से मुझे एलिमनी चाहिए आधा आधा करो.
1: स्मार्ट बॉय.

0: हमारे तीसरे घंटे में हम वही बात करेंगे जो आज हमने सुबह सुबह 7 बजे करी थी। भीगे होंठ तेरे,
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती।
2: मैंने कहा था ना, धीरे धीरे मैं अपने रंग में रंग दूंगी, रंग दूंगी।
0: अब्र सा बदन। हाँ, तो अब ऐसा है कि तुमने देखा है जिंदगी में एक नई चीज आई है। नई चीज मतलब कि एक नए किस्म के बाबा जी आए हैं। ही इज कॉल्ड द चुम्बन बाबा। ओके, चुम्बन बाबा, एंड ही इज अंग्रेजी में द लिप किस बाबा। सो ही इज अ सेल्फ स्टाइल्ड साधु जो कि वायरल हो चुके हैं इस समय सोशल मीडिया पर। क्यों? क्योंकि जितने उनकी फीमेल डिवोटीज आती हैं वो उनको लिप्स पर किस करके आशीर्वाद देते हैं बेसिकली। सो होता कुछ ऐसा है, जब मैं वीडियो देख रही थी इसका, बाबा जी बैठे हैं अपनी जगह पे, ठीक है, अच्छा, वो जो औरतें आ रही हैं जो बिल्कुल लीन है उनके उनकी सेवा में, वो आती हैं और फिर जो बाबा जी का साइडी है वो उठा के बाबा जी और उस लड़की, उस औरत के ऊपर चादर डालते हैं, ठीक है, और अंदर बाबा जी जो हैं, जो कि ऑरेंज कलर के कपड़े पहन के बैठे हैं, डायरेक्ट लिप टू लिप कांटेक्ट करते हैं। क्लोज प्रॉक्सिमिटी रिचुअल्स होती हैं विद द वुमन अंडर दिस क्लॉथ कवर, ठीक है। अभी लोगों ने कहा है ये किस तरह का गुरु मंत्र है, लेकिन बाबा जी का कहना है कि उसके बाद बड़े बड़े लोगों की बीमारियां ठीक हो गई है। व्हाट डू यू थिंक, ऐसी दीक्षा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, बताओ जरा।
2: मैं तो आज बात कर रही हूँ मासूम मर्दों के बारे में। बेचारे अब क्या करें, वो भलाई करने निकले हैं, जन कल्याण उनका वो है, तो बस अब क्या है कि उनका जल कल्याण जो है वो उनके होठों से ही होके निकल रहा है, तो क्या ही कर सकता है वो बेचारा आदमी।
3: कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं,
0: क्या करेंगे इनके बारे में। रेडियो मस्ती 24/7 पर, कौन है ये औरतें, कौन है ये भूली औरतें, क्या करेंगे तुम्हारा तरकी कहीं के।
4: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore. Check it out.

कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अदिति मेरे शेर मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा, तूने इतना बड़ा झोल कर दिया। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते हैं।

0: आइए आइए, बहुत ही सैटिस्फैक्टरी वाली खबर लाई हूँ मैं, मतलब सुनकर ही बहुत ही मजा आ गया।
1: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग।
2: देखो जापान की औरतें आज हग करके ही रहेंगी। रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है मसी मैडनेस, और मसी मैडनेस में अंटारा आपकी कौन सी खबर है बताओ
0: भाई। एक बहुत ही, ये बहुत पुरानी वाली चीज है लेकिन बहुत ही सैटिस्फैक्टिंग वाली चीज है। होता था ना पहले, बोलते थे बाबा कि अरे एक एक बार आगे पीठ में ना एक बार इधर इधर खुजा देना जरा, थोड़ा सा इधर, थोड़ा थोड़ा इधर, नहीं नहीं नहीं इधर इधर इधर इधर, ऐसे करके फिर इन्वेंट हुआ वो वाली लकड़ी का जिसमें ऐसे नाखूनों जैसे वो है, तो वो करके ऐसे करके आपने देखा होगा कि लोग खुजाते होंगे। बट इट्स अ वेरी, जब आपको सही जगह पे खुजली हो जाए तो उसका जो सैटिस्फैक्शन है दैट इज अनबीटेबल।
2: आई कैन नॉट हैंडल दैट, आई कैन नॉट हैंडल समबडी टेलिंग मी यार जरा यहाँ पे खुजली कर देना। मैं सिर्फ एक ही बात कहती हूँ कि भैया जब शरीर बनाया ना भगवान ने तो तुम्हें हर जगह पहुंचने का एक तरीका भी दिया है साथ में। यू कैन टच योर बॉडी एवरीवेयर एंड स्टॉप स्माइलिंग अंतरा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। चलो बताओ तुम्हारी क्या सेटिस्फेक्शन है। हाँ,
0: बंदे ने तो बिजनेस मॉडल ही तैयार कर दिया इसी के ऊपर भाई। ये बंदा 5,000 रुपए पर घंटा लेता है पीठ खुजाने के लिए, है 14 लाख की मंथली इनकी जो है इनकम है। एंड चाइना में ही रन्स 2 आउटलेट्स जहां पर इस तरह की बैक स्क्रैचिंग सर्विसेज के लिए लोग बहुत खुशी खुशी आते हैं। अच्छा, उसमें उसके साथ उन्होंने बीच बीच में कहते एड भी सर्विसेज करनी चाहिए, तो वो एक होता है खुजाना, एक होता है हल्के हल्के हाथों से ऐसे सर हाथ ऐसे बस फेर देना। मुझे एकदम ऐसे वाली फीलिंग आती है ना, वो एकदम बस वो हम लोग के बंगाली में हम लोग छोटे में इसको बोलते हैं सुसुड़ी।
2: ओके, एंड दैट मींस
0: द द द होल
2: फीलिंग, the feeling,
0: the feeling, yeah, सुसुड़ी करो दो सुसुड़ी।
2: oh my god, मैं कह रही हूँ ना, I cannot imagine, मतलब एक एक गाय भैंस भी पेड़ के पास जाके अपने आप खुजल लेती है, लेकिन इंसान ही है जो दुनिया में लोगों को पैसे देके खुजलवाता है। आई टेल यू क्या खुजली है यार ये। अपने

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: भाई ऐसा है कि अगली खबर हमारी जो आ रही है यहाँ पर रेडियो मसी 24/7 पर, एक ऐसी खबर है जो आप सुनेंगे और आपको लगेगा ऊपर से नीचे तक ड्रिगल ड्रिगल करता हुआ कौन सा वाला जानवर घूमता है तुम्हारे, अगर तुम उसको पकड़ो तो बताओ बताओ.
2: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी
1: करके जो जाता है ऐसे ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर. बताओ
3: सांप, सांप.
1: हाँ सांप की कहानी सुनाएंगे. अब सांप की कहानी क्या है कि एक मलेशिया का स्नेक चार्मर है, हु इज नोन एज द स्नेक किंग. ओके, स्नेक किंग.
3: ओके,
1: 40 दिन तक वो इंसान 400 कोबरास के साथ में ही स्पेंट अपना टाइम इन अ स्मॉल रूम. ओके, 12 आवर्स अ डे. और वो बंदा, तो ये सोच, ही ऑल्सो स्पेंड 21 डेज विद 6,000 स्कॉर्पियंस और उसके बाद वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया. 25 साल के करियर में उसने सर्वाइव करे 99 स्नेक बाइट्स और फिर एट द एज ऑफ 48 वो मर गया जब उसको एक किंग कोबरा ने, एक लाइव शो केएल में चल रहा था और वहां पर बाइट किया और 3 दिन के बाद वो आदमी मर गया. अब उसके बाद में उसका जो बेटा अमजद खान, वो अब फैमिली का ट्रेडिशनल स्नेक हैंडलिंग आगे कर रहा है. मतलब क्या है ये,
3: मतलब सवाल मेरा ये कि क्यों क्यों करना है ऐसा.
1: करना शौक है, अलग अलग प्रोफेशन है लाइफ के. अब खुजल्ला भी एक प्रोफेशन तुमने बताया ही था ना, क्यों करना है ऐसा.
3: हाँ बट खुजली और सांप.
1: हाँ मतलब
3: आई मीन
1: खुजली तो है ना सांप के साथ रहने की भी तो खुजली है और क्या है. रेडियो मस्ती 24/7 पर बढ़ते हैं आगे, मिलते हैं आपको एक और खबर के साथ में जस्ट अ लिटिल.
3: मैं तो बुरा मान, मैं मेरे को तो बुरा लग गया खुजली के सेटिस्फेक्शन को सांप के साथ इन्होंने कंपेयर करना. नहीं
1: ये बड़ी सेंसिटिव है कुछ टॉपिक्स के बारे में.

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: हाथ नहीं लगाना चाहिए ऐसी चीजों को, बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए. मैं पर्सनली कहना चाहती हूँ, समोसे को कैसे हाथ लगा दिया यार तुमने.
2: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं.
1: क्या मस्ती मैडनेस.
3: बॉटल में फार्ट खरीदने वालों के नाम ये वाला शो हमारा रेडियो मस्ती 24/7 पर. वेरी वेरी पेक्यूलियर शो विच इज ऑब्वियसली ऑफ बीट कम्प्लीटली, है ना अंतरा.
1: समोसे वाली फार्ट पता नहीं क्या ही क्या क्या स्मेल करती होगी.
3: ओके
1: सो बट एनीवेज ये आयुर्वेदिक फार्ट की स्मेल पता नहीं कैसी आएगी. वही मैं सोच रही थी भाई, समोसा इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग. ठीक है, एक तो जब ये लोग समोसे के साथ पहले ही बीच में जब ये पनीर बीच में डाल दिया, फिर मटर डाल दिया, ये कर दिया, उसी में मेरे को इतना लगे कि समोसे को समोसा रहने दो यार, क्या क्या टेंशन है.
3: आई एग्री.
1: बट अब दिस दिल्ली गाय लक्ष्मी नगर में इनकी दुकान है बाय द वे, आयुर्वेदिक समोसा ये लेकर आए हैं.
3: ओके
1: ठीक है, इसके अंदर का जो फिलिंग है तो वो काफी सारा ऐसा इंग्रेडिएंट है आयुर्वेद का जिससे आपके इंडाइजेशन एंड एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जो आप खाएंगे इसको तो सॉल्व हो जाएंगी. तो मतलब आपका समोसा खाना इज नॉट गोइंग टू बी अ बिग डील, व्हिच वाज एनीवेज नॉट.
3: नहीं नहीं, समोसा खा के वैसे भी आपका इंडाइजेशन वगैरह का सब ठीक हो जाता है, आपका पूरा पेट साफ हो जाता है अच्छे से, मतलब
1: एक बार में.
3: तो समटाइम्स एक्चुअली कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं कहती हूँ कि यार आई थिंक बहुत दिन हो गए ये खाया नहीं है, या तो ये जाके खा लो या फिर डलकोलेक्स खा लो. जो कि
1: टोटली अगेंस्ट ऑफ एयर फ्राइड समोसा एज वेल,
3: है ना.
1: लाइक रिसेंटली समबडी सॉल्ड मी दैट, आई सेड ये तौहीन है समोसे की, जब तक समोसा पूरे तेल में डूब के फ्राई होके ना निकले.
3: यहाँ मैं चुप ही रहूंगी तो अच्छा है, क्योंकि मैं तो एयर फ्राइड समोसा ही खाती हूँ. गुड मॉर्निंग एवरीबडी. इससे पहले कि मुझे यहाँ पर कमेंट मिले, मैं जा रही हूँ ऑफ माइक, हम लड़ाई करेंगे इसके बारे में.

0: गरम कड़ाही, भुनता हुआ बेसन, वो हल्की आंच पर घुलती हुई चाशनी,
1: क्यों सोचते ही आया ना याद वो दिवाली वाला शाही स्वाद।
2: इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ। रिलिश करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज, ग्राम एंड गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर। नमकीन चार्ज टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड प्रेशर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस। शाही महारानीज रॉयल मिठाई एंड नमकीन। अर्ली बर्ड प्राइसेस फ्रॉम $72 प्लस ऑनवर्ड्स अंटिल 11th अक्टूबर। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 6235-8840 और लॉग ऑन टू shahimaharani.com।
3: सम इनविटेशंस आर सिंपली टू स्टाइलिश टू मिस। This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
4: It's a must-be partner event.

0: भाई पर्सनली स्पीकिंग मुझे आज का शो बहुत बहुत बहुत मजा आया, क्योंकि हर तरह की खबर है आज हमारे पास। आज हमने डिवोर्सेस की बात कर ली, आज हमने सांपों की बात कर ली, हमने आज समोसों की बात कर ली, आज हमने हर तरह की ऐसी बात करी है जो कि मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली हमारा ऑनकोर शो सुनना ही चाहिए।
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो
2: बिल्कुल, जो कि शनिवार शाम को 5 बजे से शुरू होता है
0: जी
2: जस्टिन के।
0: और अभी तक अगर आप सैटरडे ही सुन रहे थे तो आप बोलेंगे हैं अच्छा तो अभी तक आप ऑन कोर ही सुन रहे थे। हा हा ऑन रेडियो मस्ती 24/7 गाइस, टाइम फॉर अस टू गेट इनटू आवर वीकेंड। एंड ऑफ कोर्स अंतरा तो जस्ट कैन नॉट वेट, वो तो मतलब पता है ऑलरेडी अपने बैग बुक पहन के ना बैठी होती है कि बस हाँ, उसके
2: वो बाहर एक पाव बाहर रहता है। हाँ, स्टूडियो के बाहर एक पाव ऐसे ऐसे करके बात कर रही होती हूँ मैं।
0: और सबसे अजीब बात ये होती है कि द मोमेंट वी आर अबाउट टू फिनिश शी सेज अच्छा मैं कॉल करती हूँ ना, कॉल पे बात कर लेते हैं अगर कुछ है, ताकि कमाल हो जाए अगर ये रुक जाए और बोले कि भैया मैं काम खत्म करके चली जाती हूँ। ना ना, आज इसे कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। जा रही हो?
2: फ्राइडे है भाई।
0: मैंने सोचा था 1 घंटा रुक जाते तो समर जी से मिलके चले जाते आज।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं, समर जी को अपना काम करना दो, ही नीड्स हिज स्पेस, आई रिस्पेक्ट हिज स्पेस।
0: नाना पाटेकर का शो करेगा वो आज की नहीं?
2: यही और भाई समर जी के क्वेश्चन ना उनसे पूछा करो। हैं, मैं तो बोलना चाहती हूँ।
0: अरे जब बोला ना उसको कि नाना पाटेकर जी का शो कर दे तो कहाँ से गाने लाऊंगा मैं, क्या करूंगा? हाँ। मैंने कहा चल ये देख ले तू अगर तेको लगता है तो। उसने मेरे को ऐसे घूर के देखा ना। On Radio Masti 24/7 guys, with all due respect to the departed soul, हम आगे बढ़ते हैं और आपको आपके वीकेंड की शुभकामनाएं देते हैं। चले यहाँ से अंतरा, बाय बाय।
2: जी जी बिल्कुल।

0: आरजे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: गरम कड़ाही, भुनता हुआ बेसन, वो हल्की आंच पर घुलती हुई चाशनी,
1: क्यों सोचते ही आया ना याद तो दिवाली वाला शाही स्वाद।
3: इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ। रिलिश करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज, ग्राम एंड गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर। नमकीन चार्ज टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड ट्रेजर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस। शाही महारानी रॉयल मिठाई एंड नमकीन। अर्ली बर्ड प्राइसेस फ्रॉम $72 प्लस ऑनवर्ड्स अंटिल 11th October। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 6235-8840 और लॉग ऑन टू shahimaharani.com।
2: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें। समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। योर डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया, मस्ती 90s मिक्सटेप विद आपकी 90s वाली अंतरा, थर्सडेज 11 AM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: Some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
2: It's a Masti Partner event.
3: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
4: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
5: करण अर्जुन आएंगे
6: ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
7: असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, अंधा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन, फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: कुछ पुरानी धुनें, कुछ भूली बिसरी यादें,
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार,
0: कोई आवाज, कोई साज, सिनेमा की दुनिया के किस्से, रुलाते हंसाते उदासी भरे खिलखिलाते किस्से, समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। धरती के फैले आंगन में पल दो पल है रात का डेरा। जुल्म का सीना चीर कर देखो, झांक रहा है नया सवेरा। ढलता दिन मजबूर सही, चढ़ता सूरज मजबूर नहीं। हेलो सिंगापुर, मैं हूँ समर, आपके साथ शो है लेजेंड। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आज मेरे साथ हैं एक बहुत दीवाना दिलशाद शायर, उर्दू अदब का एक ऐसा फनकार जिसने इंसान के दिलों में जिन गीतों के बीज बोए उनसे सदाबहारी पौधे निकले। हर एक पौधे पर कई कई फूल खिले, कई रंगों के फूल, कई खुशबुओं से भरे हुए फूल। वो गीत हर सुनने वाले को अपनी रूह की पुकार लगे, अपनी ही आवाज लगे, खुद के आंसू लगे, खुद की मोहब्बत लगे, खुद के दर्द लगे। मैं आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा, वो है नगमा निगार अब्दुल हई। जी हाँ, जिन्हें प्यार से आप जानते हैं साहिर लुधियानवी के नाम से। साहिर जिसका मतलब होता है अलर्ट, वेकफुल, यानी जो सोया ना हो। साहिर साहब का अंदाजे बयां भी ऐसा ही था, अलहदा सा। उन्होंने अपने हर जज्बात को तरानों की शक्ल दी, यही वजह है कि वो पीपल्स पोएट कहलाए। तो आज हम उनके जिंदगी नामे को ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं उनके बारे में एक और बात आपको बता दूं कि जिस वक्त वो गीत लिखने आए उस वक्त लिरिसिस्ट को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी, गीतकारों को कोई पहचानता भी नहीं था, कोई खास इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी उन्हें नहीं मिलते थे। इनफैक्ट गीतकार का नाम भी मेंशन नहीं किया जाता था रिकॉर्ड्स पर। साहिर लुधियानवी ने लिरिसिस्ट के हक में आवाज उठाई और तभी से सिंगर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ उनका मतलब लिरिसिस्ट का नाम भी आने लगा और उन्हें रॉयल्टी भी मिलने लगी। ऐसी ही एक दमदार शख्सियत थे साहिर लुधियानवी, लेकिन बेहद नर्म और जज्बाती इंसान, जिनके आज हम करेंगे बात और आपको कई शहरों की भी सैर कराएंगे। इसलिए कहीं जाएगा मत, सुनते रहेगा सिंगापुर ओनली हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं हूँ समर, आपके साथ, स्टे कनेक्टेड।

0: इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxon India, the Family Expo is back with its grand 43rd edition celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition stanya, cultural entertainment and family fun. 16th se 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo mein. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxon India, the Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxonindia.com.
1: So stop the music, Rebo, sing it!
2: नाचने का मन है, मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
4: Check it out.

0: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। शो है लेजेंड्स, मैं हूं समर और आप सुन रहे हैं सिंगापुर ओनली हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि हम कुछ शहरों का भी सफर तय करेंगे, तो पहले आपको लुधियाना लिए चलता हूं। ये वो शहर था जहां के सामंती सोच वाले रईस जागीरदार फजल मोहम्मद के घर साहिर साहब का जन्म हुआ था। फजल मोहम्मद साहब की कई पत्नियां थी, उनमें से एक थी साहिर की वालिदा, नाम था सरदार बेगम। साहिर के माता पिता दोनों ही अलग अलग तरह की सोच रखते थे, दोनों की आइडियोलॉजी एकदम अलग थी। जाहिर था कि दोनों के बीच बहुत डिफरेंसेस रहते थे, काफी लड़ाई होती रहती थी। साहिर के पिता ने भी कभी उनको अपना बेटा नहीं माना, उन्हें प्यार से महरूम ही रखा। साहिर की मां ने उनके पिता के ऊपर अदालती मुकदमा दायर कर दिया और 13 साल की उम्र में उन्होंने कोर्ट में अपने पिता के खिलाफ गवाही दे डाली। इस पर इनके वालिदिन से इतने खफा हुए कि साहिर को जान से मारने तक की धमकी दे डाली। माँ को साहिर के प्रोटेक्शन के लिए गार्ड्स रखने पड़े, इसके लिए उन्होंने अपने सब जेवर बेच डाले। ये लोग रेलवे लाइन के किनारे रहने लगे जहाँ आसपास में बहुत से मजदूर रहा करते थे। इनके घर की हालत भी काफी खराब थी, यानी उनके लिए बचपन और बच्चों से काफी अलग था। सच कहें तो उन्होंने दुनिया की असली कड़वाहट चख ली थी इतनी कम उम्र में। लेकिन जिंदगी से संघर्ष जारी था। साहिर लुधियाना के खालसा स्कूल में पढ़ने लगे, हायर स्टडीज भी लुधियाना में ही की। यहाँ के सरकारी बॉयज कॉलेज में पढ़ते पढ़ते साहिर के मन में एक नन्हा सा बीज कविताओं का उगाया। उनकी कविताएं थोड़ी क्रांतिकारी हुआ करती थी और उनकी इन कविताओं को लेकर कई बार विवाद हुआ और नतीजतन एक बार ऐसा हुआ कि साहिर को पढ़ाई ही बीच में छोड़नी पड़ी। और देखिए, वक्त वक्त की बात है, जिस कॉलेज में पढ़ते हुए एक विवाद के चलते उन्हें वो कॉलेज ही छोड़ना पड़ा, उसी कॉलेज में, लुधियाना के इसी कॉलेज में एक ऑडिटोरियम का नाम रखा गया है उनके नाम पर, साहिर ऑडिटोरियम। यहाँ साहिर की तस्वीर है, उनकी एक नज्म लिखी हुई है। वैसे लुधियाना के कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अब भी यही मानते हैं कि यहाँ साहिर नज्म बनकर कॉलेज में आज भी हर जगह मौजूद है। इसी पर अर्ज है कि काफिले आते जाते रहते हैं, कब हुआ है यहाँ किसी का कयाम। नस्ल दर नस्ल जारी है, कारे दुनिया कभी हुआ है तमाम। कल जहां मैं था आज तू है वहां, है नई नस्ल तुझे मेरा सलाम। लेकिन उस वक्त अपने इस बेहद अजीज तर शहर को भी छोड़कर साहिर को जाना पड़ा। वो अपनी मां के साथ लाहौर आ गए। फिर क्या हुआ बताएंगे आपको, ये भी बताएंगे कि लाहौर ने साहिर के साथ कैसा सलूक किया, क्या किया। जिंदगी ने यहां पर एक टर्न लिया था और साहिर की जिंदगी की एक दूसरी पारी शुरू हो रही थी। तो ये पारी शुरू करने से पहले एक ब्रेक तो बनता है ना, एक बेहद खूबसूरत नगमा आपके लिए, और उसके बाद लौट कर आएगा समर और इस कहानी को जारी रखेगा। आप सुनते रहिए रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, सिंगापुर्स ओनली हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो।

0: गरम कड़ाही, भुनता हुआ बेसन, वो हल्की आंच पर घुलती हुई चाशनी।
1: क्यों, सोचते ही आया ना याद तो दिवाली वाला शाही स्वाद।
2: इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ। रिलिश करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज, ग्राम एंड गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर। नमकीन चार्ज टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड ट्रेजर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस। शाही महारानी रॉयल मिठाई एंड नमकीन। Early bird prices from $72 plus onwards until 11th October. For more details, call 6235-8840 or log on to shahimaharani.com. Happy Diwali.
3: Some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
4: It's a Masti Partner event.

0: तैयार हो जाइए, जब ढोल बजेगा, डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा इट्स टाइम फॉर सिंगापुर गुजराती सोसाइटी प्रेजेंट्स सिंगापुर्स ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/Navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
1: Garam kadahi, banta hua besan. वो हल्की आंच पर घुलती हुई चाशनी,
2: क्यों सोचते ही आया ना याद वो दिवाली वाला शाही स्वाद।
3: इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ। रिलिश करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज, ग्राम एंड गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर। नमकीन चार्ज टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड ट्रेजर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस। Shahi Maharani's Royal Mithai and Namkeen. Early bird prices from $72 plus onwards until 11th October. For more details, call 6235-8840 or log on to shahimaharani.com.

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: एकदम अनजान सफर, एकदम अनजान शहर, महज दो लोग, माँ और बेटा। शहर लाहौर। हेलो एंड वेलकम बैक, मैं हूँ साहिर। मैं हूँ समर। एक्चुअली मैं इतना खो गया हूँ साहिर के बारे में सोचते सोचते कि लगता है कि मैं खुद ही साहिर हो चला हूँ। कमाल का शायर, कमाल का इंसान। लेजेंड्स के सफर पर साहिर के साथ इस वक्त हम लाहौर पहुंच गए हैं। ये तब की बात है जब लाहौर भारत का ही हिस्सा था। साहिर और उनकी माँ लाहौर तो चले आए, मगर उनके पास रोजी रोटी का कोई जुगाड़ नहीं था। दिन भर वो पेट भरने की कोशिश में लगे रहते, भूखे पेट नींद कहाँ आती, तो रात रात जागते और रात को दिन की शक्ल को डायरी में उतार लेते। साहिर के शब्दों में अगर कहें तो वो कहते थे कि ले दे के अपने पास फकत एक नजर तो है, क्यों देखें जिंदगी को किसी की नजर से हम। क्या बात है। बस तो फिर वो अपनी जिंदगी बिताते रहे, शायरी करते रहे। वो दौर फैज अहमद फैज, फिराक गोरखपुरी, मजाज जैसे शायरों का था। ऐसे में इस फील्ड में साहिर का कदम जमा पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन 2 साल बाद ही उनका पहला कलेक्शन आया तलखियां नाम से, जो सभी को बहुत भाया, और इसके साथ ही साहिर को एक शायर के तौर पर पहचान मिल गई। पूरे हिंदुस्तान में इसकी धूम मच गई। मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर खयाम साहब बताते हैं कि उनको ये इतना पसंद आया तलखियां कलेक्शन जो था, कि उन्होंने इस पूरे शेर मजमुआ तलखियां को धुनों में पिरो दिया और हर नज्म को म्यूजिक दे दिया और साहिर को बताया। साहिर को इसका यकीन ही नहीं हुआ। इसके बाद उनकी नज्म परछाइयां आई, वो भी बहुत ही फेमस हुई। साहिर जिस भी मुशायरे में जाते थे, परछाइयां सुनने की फरमाइश जरूर होती थी। चाहे साहिर अपनी कोई नई नज्म पेश करना चाहे, लेकिन लोग परछाइयां ही सुनना चाहते थे। वैसे फिलहाल आप क्या सुनना चाहते हैं? एक नज्म ना, नज्म सुना रहा हूँ। फिल्म का नाम है प्यासा। सुनते रहिए सिंगापुर ओनली हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो रेडियो मसी 24/7 लाइव। मैं हूँ समर आपके साथ, और आज साहिर को जी रहे हैं हम। स्टे कनेक्टेड।

0: दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxon India, the Family Expo is back with its grand 43rd edition, celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition standya, cultural entertainment and family fun. 16th to 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo Mein. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxon India, the Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxonindia.com.
1: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
2: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस।

0: कुछ पुरानी धुने, कुछ भूली बिसरी यादें,
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान,
0: कोई आवाज, कोई साज। सिनेमा की दुनिया के किस्से रुलाते, हंसाते, उदासी भरे, खिलखिलाते किस्से। समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से।

0: सुन रहे हैं समर के साथ लेजेंड्स फिर से।
1: जब हम चलें तो साया भी अपना साथ न दे, जब तुम चलो तो जमी चले आसमां चले, जब हम रुकें तो साथ शामे बेकसी रुके, जब तुम रुको तो बहार रुके चांदनी रुके। मैं हूं साहिर मई समर, आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, सिंगापुर ओनली हिंदी रेडियो नाउ ऑन द गो, और शो का नाम है लेजेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं ऑफकोर्स साहिर साहब की। मैंने आपको दो शहर घुमा दी, लुधियाना और लाहौर, अब हमारा शहर है दिल्ली। क्यों बताता हूँ, लाहौर में साहिर को पहचान मिल गई थी, वो शहर के अव्वल दर्जे के शायरों में शुमार हो चुके थे। इसी बीच वो उर्दू की चार बड़ी मैगजीन में काम करने लगे। हिंदुस्तान आजाद हो गया इसी दौरान, और आजादी की खुशी तो थी ही, मगर भारत का बंटवारा हो गया था, साहिर हिंदुस्तान से अलग हो गए थे, लाहौर पाकिस्तान में रह गया था, तो वो भी पाकिस्तान में रह गए। वो अंदर से काफी दुखी थे। जिस सवेरा नाम की मैगजीन में वो काम करते थे, उसमें वो पार्टीशन के दंगों के बारे में लिखने लगे, उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया, वो फिर दिल्ली चले आए। अब जिस भारत में वो आए, वो अंग्रेजों से आजाद मुल्क था, जवाहरलाल नेहरू सपनों का भारत बना रहे थे, वहां अपने ख्वाबों के लिए साहिर पहुंचे। अब नया देश था, नया सवेरा था, उनकी खुद की पहचान अब अब्दुल हई उर्फ साहिर नहीं थी, बल्कि साहिर लुधियानवी थी। उन्होंने सोचा लिखेंगे पढ़ेंगे, एक मैगजीन निकाली शाहरा, उर्दू की सारी मंथली मैगजीन्स उसके सामने फेल हो गईं। खूब चल निकली है मैगजीन, मगर साहिर का मन इसमें नहीं लगा। दरअसल उनका इंतजार एक नया शहर कर रहा था, और वो शहर कौन सा था अगर आपसे पूछूंगा तो आप फटाफट जवाब दे देंगे, माया नगरी मुंबई। जी हाँ, अगर आप ये कहेंगे तो एकदम सही होंगे, क्योंकि वो मुंबई चले आए, और वहां उनका सफर कैसा रहा ये भी आपको बताएंगे। लेकिन ये तय था कि वो बाजारों और दफ्तरों के चक्कर काटने नहीं आए थे, वो आए थे फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाने, फिल्मी दुनिया को अपने आप को कबूल करवाने। फिलहाल आप ये नगमा कबूल कीजिए, मैं लौट कर आता हूँ, फिर साहिर के फिल्मी नामे को आगे बढ़ाएंगे, कुछ चीजें ढूंढ कर लाएंगे शहर मुंबई से। याद रखिए, अगला शहर हमारा मुंबई है। शहरों की जर करा रहा है आज आपका दोस्त एंड होस्ट समर, आप सुन रहे हैं सिंगापुर ओनली हिंदी रेडियो नाउ ऑन द गो, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, स्टे कनेक्टेड।

0: अपने चाँ।
1: ठहरो मीना, मैं खाना लेके आता हूँ, दोनों इकट्ठे खाएंगे। हाँ
0: ओके।
2: चिनोई स्वीट, मेरी माँ सख्त बीमार है, डॉक्टर के पास ले जाना है। गाड़ी ले जा सकता हूँ?
3: हाँ ले जाओ, ले जाओ। थैंक यू।

0: लौट आए
1: गरम कड़ाही बनता हुआ बेसन वो हल्की आंच पर घुलती हुई चाशनी
2: क्यों सोचते ही आया ना याद तो दिवाली वाला शाही स्वाद
3: इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ रिलिश करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज ग्राम एंड गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर नमकीन जार्स टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड ट्रेजर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस Shahi Maharani's Royal Mithai and Namkeen. Early bird prices from $72 plus onwards until 11th October. For more details, call 6235-8840 or log on to shahimaharani.com. Happy Diwali.
4: तैयार हो जाइए जब ढोल बजेगा, डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा It's time for Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/Navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: जय हो राधे श्याम की, जय हो सिया राम की और जय हो बंबई धाम की। यह बंबई नगरिया तू देख बबुआ। समर को अच्छे से बताया कि आप सिंगापुर में हैं, मैं भी सिंगापुर में हूँ, मगर हम आपको तीन जगहों पर तो घुमा चुके हैं। जहाँ जहाँ साहिर हैं, वहाँ वहाँ हम हैं। वैसे साहिर मुंबई आए तो उनको सबसे पहली फिल्म मिली आजादी की राह। इस फिल्म ने लोगों का ध्यान ज्यादा नहीं खींचा, मगर जो साहिर चाहते थे वो हो गया था। साहिर ने फिल्मी दुनिया के दरवाजे पर एक दस्तक दे दी थी और ये बहुत ही मजबूत दस्तक थी। इस दस्तक को दो साल बाद पहचाना म्यूजिक डायरेक्टर SD बर्मन साहब ने। उन्होंने नौजवान फिल्म में उनसे गीत लिखवाए। इसी साल फिल्म आई बाजी, इसमें निर्देशक थे गुरुदत्त। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, बस फिर क्या था, तकदीर बन गई और SD बर्मन साहब के साथ साहिर की बहुत जबरदस्त जोड़ी बन गई। इस जोड़ी ने हिट गानों की झड़ी लगा दी। प्यासा के गाने कौन भूल सकता है। उसके बाद तो ऐसा दौर आया कि साहिर के गीत आने वाली हर फिल्म में होने लगे। सब संगीतकार उनके साथ काम करना चाहते थे। अच्छा, जब साहिर मुंबई आए तो उनके पास रहने का कोई ठिकाना तो था नहीं। वो मशहूर कहानीकार इस्मत चुगताई के घर शाम का खाना खाते थे। साहिर जैसे सब लोग आते हैं मुंबई, उसी इरादे से आए थे कि फिल्मी खजाने से नाम काम और दाम कमाएंगे और फिर एक बुक पब्लिशिंग हाउस खोलेंगे। लेकिन मन में एक ख्वाहिश थी कि कुछ ना कुछ करके दिखाना है यहीं इसी फिल्मी दुनिया में। और इसी अरमान को पूरा करते करते उनकी मुलाकात हो गई गुरुदत्त और महेश कौल सरीखे जहीन और हम ख्याल लोगों से। और ऐसा हुआ भी, हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर की पहली पसंद साहिर बन गए, हर म्यूजिक डायरेक्टर की चाहत साहिर। ये सितारा अब मुंबई के आसमान पर चमकने लगा था। रोमांटिक गीत हो या फिर सोशल, सब लिखने लगे साहिर। चलिए फिलहाल आपको मैं उनका एक गीत सुनवा देता हूँ, लेकिन जब लौट कर आऊंगा तो आपको प्रीत नगर की सैर कराऊंगा। आज समर सैर पर निकला है साहिर के जिंदगी नामे के साथ। सुनते रहिए सिंगापुर ओनली हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: लाहौर और अमृतसर के बीच एक छोटा सा शहर है प्रीतनगर। ये साल 1944 की बात है। सीन कुछ यूं है कि पंजाबी एंड उर्दू पोएट्स की एक महफिल जमी है। आगे का हाल आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले मैं ये तो बता दूं कि मैं हूं आपका हम सफर सिंगापुर के एकमात्र हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। मैं आपसे मुखातिब हूं और आज मैं अपने इस शो लेजेंड्स के जरिए बात कर रहा हूं साहिर लुधियानवी साहब की। और आज हम यहां सिंगापुर में बैठे हुए साहिर लुधियानवी के साथ घूम रहे हैं दुनिया। और अभी मैं आपको एक बहुत ही सच्ची दास्तान सुनाने जा रहा हूं। मुशायरा प्रीतनगर में चल रहा था, उसमें साहिर आए और वहां आई थी अमृता भी, अमृता प्रीतम। बहुत ही फेमस पंजाबी पोएट थी। साहिर उर्दू में लिखते थे। साहिर ने अपनी नज्म सुनाई। उस नज्म में जाने ऐसा क्या था कि अमृता खुद ही नज्म हो आई। उनके दिल की यही तमन्ना हो उठी कि साहिर अब उन्हें पढ़े। मुशायरा खत्म तो हो गया, दूसरे दिन ये मुशायरा होना था नजदीक के ही लोपोकी टाउन में। उस रात बहुत बारिश हुई, रास्ते में कीचड़ भर गया था, काफी फिसलन थी। साहिर और अमृता पैदल चल रहे थे। अमृता साहिर से थोड़ी दूरी पर चल रही थी। साहिर की परछाई जमीन पर पड़ रही थी। अमृता प्रीतम ने साहिर को इस तरह महसूस किया और लिखा कि उनको साहिर के साए ने ऐसे घेर लिया था कि उन्हें लगा जैसे जन्मों से उनके ही साए तले जी रही हूं। फिर ऐसे मुशायरे होते रहे, साहिर अमृता मिलते रहे। उनके बीच एक अनकहा सा रिश्ता बन गया था। दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते पर कुछ कहते नहीं। लाहौर में अमृता के घर साहिर आते, चुपचाप बैठे बैठे सिगरेट पीते रहते। उनके जाने के बाद अमृता उन सिगरेटों के जले हुए टुकड़ों से कश भरा करती थी, जैसे वहां जरा से छूट गए साहिर को भर रही हूं अपनी सांसों में। साहिर ने भी एक्सेप्ट किया कि वो लाहौर में उनके घर के बाहर उनकी खिड़की के बाहर घंटों खड़े रहा करते थे, जहां अमृता अपने पति के साथ रहती थी। मगर इन्होंने कभी इजहार इश्क नहीं किया। वजह क्या थी, कई लोग इसके अंदाजे लगाते रहते हैं। तो पार्टीशन के बाद अमृता दिल्ली आ गईं और साहिर लाहौर रह गए। अमृता ने कई कविताएं लिखी, शॉर्ट स्टोरीज लिखी, नॉवेल लिखे। एक शॉर्ट स्टोरी आखिरी खत उन्होंने साहिर के लिए ही लिखी थी। वो जिस मैगजीन में छपी वो साहिर ने पढ़ी। उस वक्त वो मुंबई में थे। उन्होंने अपने दोस्त को टेलीफोन पर कहा, अमृता ने मेरे लिए ये लिखा है। मगर तब भी दोनों ने कुछ न कहा। ये खामोश अफसाना था, खामोशी रह गया, रूहों में मोहब्बत बनकर बस गया। तो इसी नोट पर एक नज्म सुनवा देता हूं आपको। कहते हैं कि साहिर साहब ने ये अमृता के लिए ही लिखी थी। इस इश्क के फलसफे को यहां एक छोटा सा विराम देते हैं इस नज्म के साथ। आप सुनते रहिए सिंगापुर जोनली हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो रेडियो मसी 24/7 लाइव। मैं हूं समर आपके साथ, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स।

कर ली, अब चाहे लग जाए हथकड़िया, मैंने तेरी बाह पकड़ ली, मैंने तुझ पे नियत कर ली।

0: सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन तू बता दे कि तुझे प्यार करूं कि न करूं। वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साहिर का रुतबा आज हमारे शो पर पूरी तरह से छाया हुआ है, ठीक उसी तरह बंबई में छा गए थे साहिर। साहिर को आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन साहिर साहब मशहूर कहानीकार कृष्ण चंद्र के घर मुंबई में ठहरे थे। साहिर साहब की एक आदत थी कि वो सुबह देर से सोकर उठते थे, तो उस वक्त उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। वो उठकर पहले सिगरेट पीते थे, फिर थोड़ी देर घुटनों में सर छुपाए बैठे रहते थे। कृष्ण चंद्र ने जब ये देखा तो साहिर को कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें कभी कोई काम नहीं मिलेगा। तुम देर से उठते हो, तब तक सब काम लेकर घर लौट रहे होते। साहिर ने उनकी बात मान ली। बस काम मांगने के सिलसिले में ही निकले तो SD बर्मन साहब से उनकी मुलाकात हो गई। वो उस वक्त धुन पर लिरिक्स लिखकर लाने के लिए नए गीतकारों को दे रहे थे। साहिर का लिखा गीत उनको सबसे अच्छा लगा, लेकिन फिर वक्त ने पलटी खाई। वो पहले गीत लिखते, उस पर धुन रची जाती। कभी ये नहीं हुआ था कि साहिर ने धुन के हिसाब से गीत लिखा हो। फिर वो दिन भी आए जब साहिर साहब से पूछकर फिल्म का म्यूजिक डायरेक्टर तय किया जाता था। सचिन देव बर्मन के साथ साहिर की जोड़ी जम चुकी थी। प्यासा, हाउस नंबर 44, फंटूश, बाजी, देवदास, मुनीम जी, ये सब फिल्में उन्होंने SD बर्मन साहब के साथ की। खयाम साहब के साथ फिर सुबह होगी, शगुन, कभी कभी, और रोशन साहब के साथ बरसात की रात, ताजमहल, चित्रलेखा, रवि साहब के साथ गुमराह, कल, आज और कल, वक्त, हमराज। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि फिल्मी संगीत का वो साहिर दौर था। साहिर के गीतों के भंवर से तीन मोती निकाल कर लाएंगे। पहले मैं जरा तैयार हो जाऊं, आप सुनिए ये गाने और वापस लौट कर आइए। आप सुनते रहिए सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो मसी 24/7 लाइव। मैं हूं समर आपके साथ।

0: कुछ पुरानी धुनें, कुछ भूली बिसरी यादें,
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान,
0: कोई आवाज, कोई साज। सिनेमा की दुनिया के किस्से रुलाते, हंसाते, उदासी भरे, खिलखिलाते किस्से समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर।

0: आप सुन रहे हैं समर के साथ लेजेंड्स फिर से।
1: अभी न जाओ छोड़ कर के, दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो। हाँ जी, अभी अभी आया हूँ। मैं हूँ समर, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स ओनली ऑन रेडियो मसी 24/7 लाइव, सिंगापुर्स ओनली हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो। और आज हम बात कर रहे हैं मशहूर गीतकार नगमा निगार साहिर लुधियानवी साहब की। अच्छा, तो ये वक्त वो होता है जब मुझे 3 बेस्ट सुपरहिट गाने बताने होते हैं अपने लेजेंड के। लेकिन जब मैं साहिर साहब के बारे में पढ़ रहा था, उनकी नज़मों को पढ़ रहा था, तो इस कदर साहिर की शायरी और नज़मों में डूब चुका हूँ कि अब क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत ही मुश्किल हो गया है मेरे लिए तो। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की और ये 3 गाने मैंने छांटे हैं, ये मेरी पसंद के हैं। हाँ, तो पहला गाना है, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। अच्छा, इस गाने के पीछे की दास्तान भी बड़ी ही रोचक है, बड़ी निराली है। हुआ यूं कि रमेश सहगल साहब एक फिल्म बना रहे थे, फिर सुबह होगी। ये फिल्म बन रही थी रशियन राइटर दोस्तोवस्की के नॉवेल क्राइम एंड पनिशमेंट पर। यह भी तय था कि इस फिल्म में राज कपूर ही काम करेंगे, गीतकार साहिर ही इसके गाने लिखेंगे, ये भी तय था। लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी कि राज कपूर के पसंदीदा म्यूजिक डायरेक्टर थे शंकर जयकिशन साहब। उस समय एक अनकही शर्त हुआ करती थी कि अगर राज कपूर को आप हीरो ले रहे हैं तो उसका म्यूजिक शंकर जयकिशन ही करेंगे। लेकिन साहिर साहब ने कह दिया कि म्यूजिक डायरेक्टर उनकी पसंद का होगा और वही होगा जिसने दोस्तोवस्की का उपन्यास पढ़ा हो, और वो कौन हो सकता था? जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ खयाम साहब। और पता है क्या हुआ, साहिर साहब आए, खयाम से बोले, ओए खयाम, इम्तिहान देवेगा? और फिर रमेश सहगल, राज कपूर और साहिर साहब के सामने धुन सुनाई। राज कपूर साहब को धुन जंच गई और अपने गीत के लिए साहिर का पसंद का म्यूजिक डायरेक्टर भी। और दूसरा गाना जो आज मेरी लिस्ट में है वो है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, फिल्म गुमराह का ये गाना। इसका म्यूजिक दिया था रवि ने, उन्होंने साहिर की फेमस नज्मों पर गीत भी बनाए। और तीसरा गाना जो मैं लेकर आया हूँ वो है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, हमको आना पड़ेगा। तो ये साहिर साहब की कलेक्शन में से 3 सुपरहिट बेस्ट सॉन्ग्स मैंने चुने हैं। हालांकि एक से बढ़कर एक है, ये मजबूरी थी कि मुझे सिर्फ 3 ही गाने चुनने थे, वरना इस नायाब खजाने में एक भी नज्म, एक भी गाना बेकार नहीं है, सब सुपरहिट है। लेकिन फिलहाल इन नगमों को आप एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो मसी 24/7 लाइव, सिंगापुर्स ओनली हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो।

0: जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी, और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxalam India, the Family Expo is back with its grand 43rd edition, celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition stand-ya, cultural entertainment and family fun. 16th to 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo Mein. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxalam India, the Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxalamindia.com.

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: मैं फूल टांक रहा हूं तुम्हारे जूड़े में, तुम्हारी आंख मसरत से झुकती जाती है। न जाने आज मैं क्या बात कहने वाला हूं, जबान खुश्क है, आवाज रुकती जाती है, तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं। साहिर लुधियानवी साहब को जी रहे हैं आज हम अपने इस खूबसूरत शो लेजेंड्स के जरिए। मैं हूं जमर, आप सुन रहे हैं सिंगापुर्स ओनली हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो रेडियो मस्ती।

24/7 लाइव। साहिर जो अपने गीतों के लिए एक एक लफ्ज चुन चुन कर लाते थे, ऐसे अल्फाज जो हर दिल को धड़का सके, सोसाइटी का हर वर्ग उन्हें महसूस कर सके। मसलन मोहब्बत में है तो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, क्या कभी भूला जा सकता है। अच्छा आप गैस कीजिए, गाना जो है तो देशभक्ति का, मगर इंडिया में बारातों में बैंड बाजे पर खूब बजता है। हाँ ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। और जब बच्चों के लिए गाने लिखे तो क्या खूबसूरत गाने लिखे, जैसे बच्चे मन के सच्चे और हर बुजुर्ग होते व्यक्ति के जवान दिल का गीत है मेरी जोहर अजबी। और फिर वो गीत जिस पर हर किसी की आंख भर आई, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। कहते हैं इस गीत को गाते हुए मोहम्मद रफी साहब भी रो पड़े थे। साहिर की पहुंच रगों में बहते हुए लहू तक थी, लोग उन्हें सुनकर उन्हें पढ़कर महसूस करते थे और आज भी कर रहे हैं। साहिर के गीतों की खासियत यही है कि वो आज ही के नहीं वक्त के हर दौर में सोशल स्ट्रक्चर में फिट बैठते हैं। जैसे न मुंह छुपा के जियो, न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। या वो नया दौर का गाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलके बोझ उठाना। क्या इन गीतों की इंपॉर्टेंस और महक कभी कम हो सकती है? नहीं ना। अच्छा यहाँ अचानक से मुझे एक बात याद आ गई, मैंने आपसे अमृता प्रीतम जी के साथ साहिर के रिश्ते का जो जिक्र किया था ना, उसमें मैं एक नाम का जिक्र करना भूल गया था, वो थी सुधा मल्होत्रा। कहते हैं साहिर जब मुंबई में थे तब वो सुधा जी के काफी करीब थे, वो एक सिंगर थी। साहिर के कहने पर उन्होंने गाना भी कंपोज किया। जानते हैं वो गाना कौन सा था? नहीं जानते तो याद कीजिए, और अगर जानना चाहते हैं तो सुनते रहिए रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। इस ब्रेक के बाद, इस गाने के बाद वापस आऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। स्टे कनेक्टेड।

0: तैयार हो जाइए जब ढोल बजेगा, डांडिया थनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा इट्स टाइम फॉर सिंगापुर गुजराती सोसाइटी प्रेजेंट्स सिंगापुर्स ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Musti. Book now at sgs.org.sg/Navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
1: Garam kadahi, banta hua besan. वो हल्की आंच पर घुलती हुई चाशनी,
2: क्यों सोचते ही आया ना याद वो दिवाली वाला शाही स्वाद।
3: इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ। रिलिश करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज ग्राम एंड गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर। नमकीन चार्ज टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड ट्रेजर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस। Shahi Maharani's Royal Mithai and Namkeen. Early bird prices from $72 plus onwards until 11th October. For more details, call 6235-8840 or log on to shahimaharani.com. Happy Diwali.
4: Jaane wo kaise log the jinke

0: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: जिंदगी सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, कुछ और भी है। जुल्फ रुखसार की जन्नत ही नहीं, कुछ और भी है। मैं समर, शो है लेजेंड, और आज साहिर लुधियानवी हैं हमारे लेजेंड। आप सुन रहे हैं सिंगापुर्स ओनली हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो रेडियो मसी 24/7 लाइव। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने जिक्र किया था सुधा मल्होत्रा जी का, उन्होंने फिल्म दीदी का एक बहुत ही पॉपुलर ट्रैक कंपोज किया था। साहिर साहब के कहने पर मुकेश साहब के साथ गाया था, गाना था तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर एन दत्ता साहब उस फिल्म का म्यूजिक नहीं बना पा रहे थे क्योंकि वो बीमार थे। फिर क्या था, साहिर की जिद पर उन्होंने ये धुन बना दी। सुधा और साहिर के बीच एक लगाव था, इसी लगाव को देखते हुए अमृता साहिर से दूर हो गई। मगर ये भी सच है कि साहिर ने तमाम उम्र अमृता को ही चाहा, अपनी मोहब्बत तन्हाई की सब नज़में अमृता के लिए ही लिखी। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, उनकी बायोग्राफी में पढ़ा है मैंने। वल मुझे मोहब्बत की बातें ज्यादा पसंद हैं, इसलिए एक इंसिडेंट मुझे और याद आ रहा है। एक बार म्यूजिक डायरेक्टर जयदेव साहिर के घर पर थे, वहां चाय का बहुत पुराना सूखा सा कप रखा था, जिसे देखकर जयदेव ने कहा कि ये यहां क्यों रखा है। साहिर बोले इसमें अमृता ने चाय पी थी। हा, क्या मोहब्बत थी, मगर अनकही ही रही। खैर, साहिर साहब मोहब्बत के शायर तो थे, लेकिन वो उर्दू के बेहतरीन अदीब थे। वो क्रांतिकारी थे, वो आवाम की आवाज थे। उन्होंने हमेशा आवाम की आवाज उठाई। वो जब जवां हो रहे थे तो पूरी दुनिया विश्व युद्ध के घेरे में थी और उनका अपना देश गुलाम था। उनका घर उन लोगों के बीच था जो बहुत गरीब थे। ऐसे में उन्होंने समाज से जुड़े मुद्दों पर लिखा, दुख सुख लिखा, आंसू खुशी लिखे। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। साहिर के इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेना चाहता है आपका समर। आपसे फिर मुलाकात करेगा एक और लेजेंड के साथ, तो दीजिए इजाजत। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड पीपल अराउंड यू। फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय।

0: पहुंचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे। फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
3: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
4: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
5: As the sun rises, so does hope. Begin your day with devotion, harmony, and positivity with the Devotional Hour on

0: सस्याकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Fan. They are fresh. They are hot.

0: 2 ruling the countdown. Ye hai Masti Top 20. Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, the latest and the brightest. The week's top chart busters.
1: मेरे करण अर्जुन आएंगे
2: ना, करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे. मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए ट्यूटर पर।
0: Non-stop music, non-stop musty, only on Musty Music Cafe.
2: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore. Check it out.

0: सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट

0: नाचने का मन है
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
4: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
5: चेक इट आउट।
6: न करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: आएंगे
1: न करण अर्जुन आएंगे न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे
2: कुछ पुरानी धुने, कुछ भूली बिसरी यादें,
3: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान,
2: कोई आवाज, कोई साज, सिनेमा की दुनिया के किस्से रुलाते हंसाते उदासी भरे खिलखिलाते किस्से समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से।

0: सस्याकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Fan. Your Masti Music Cafe is

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: ओके सिंगापुर, वॉल्यूम जरा सा ऊपर कर लो बिकॉज अब अगले 3 घंटे का मूड चेंज होने वाला है। दिस इज मस्ती हैंगआउट, मैं हूं मुग्धा आपके साथ। और फ्राइडे को हम सीधा वीकेंड में नहीं जाएंगे, ना तो हम फ्राइडे को सीधा वीकेंड मोड में डालेंगे, थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे एंड देन मूव ऑन। तो देखिए, आज का रूल बहुत ही सिंपल है, जो काम हो गया है गुड, जो नहीं हुआ है अरे उसको मंडे तक थोड़ा पेशेंस रखने दो, हो जाएगा। और पता है आज के शो के लिए ना मैंने एक ऐसी फिल्म पिक की है जिसका जो हीरो है ना लाइफ को बिल्कुल टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं जीता है। पूरी बात सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बोल नहीं सकता है, वो सुन नहीं सकता है, पर मिस्चिफ, प्यार, खुशी, जिंदगी जीना उससे बेहतर शायद कोई नहीं जानता। या यू गेस्ड इट राइट, आला आला मत वाला बर्फी बफी। आज के 3 घंटे का मूड एकदम मीठा मीठा बर्फी की तरह होने वाला है, जहाँ पे इस मूवी की मस्ती, इसके गाने, इसका वाइब हम सब चेकआउट करेंगे। पर फिलहाल 3 घंटे का मूड वही रखेंगे। फ्राइडे है, प्रॉब्लम्स अपनी जगह है, शरारत, खुशी हमेशा अपनी जगह रहेगी, बचा के रखो उसको क्योंकि जिंदगी तो यही है।
2: ख्वाबों की नदी में खाए गोते, गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ ओए, गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़।
1: फ्राइडे अब बॉस परफेक्ट नहीं है, बट मेमोरेबल जरूर है। वेलकम टू मस्ती हैंगआउट, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, स्टे ट्यून्ड।

0: गरम कड़ाही, भुनता हुआ बेसन, वो हल्की आंच पर घुलती हुई चाशनी।
1: क्यों, सोचते ही आया ना याद वो दिवाली वाला शाही स्वाद।
2: इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ। रिलिश करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज, ग्राम एंड गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर। नमकीन चार्ज टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड ट्रेजर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस। शाही महारानी's रॉयल मिठाई एंड नमकीन। Early bird prices from $72 plus onwards until 11th October. For more details, call 6235-8840 or log on to shahimaharani.com.
3: तैयार हो जाइए, जब ढोल बजेगा डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा। It's time for Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/Navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके, ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: Hey, hi, welcome back. आला बर्फी सुन के ना एक जगह सीधा बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि नहीं? ऐसा लगता है इधर चलो उधर चलो इधर चलो उधर चलो, और पैर खुद ही कहते हैं नहीं नहीं नहीं नहीं, कुछ तो करो यार, बैठ नहीं सकते। फ्राइडे मूड है और मूड हल्का फुल्का है, पांव हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बिठाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक ऐसी जगह पे ले जाऊंगी जहाँ की खासियत ही है बैठना और गरबा करना। गरबा डांडिया मोड में हम आपको लेकर जाने वाले हैं, लेकिन एक अलग तरीके से। यू नो, सिंगापुर गुजराती सोसाइटी जो है लेकर के आ रही है सिंगापुर का ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि 16, 17 और 18 अक्टूबर को एट लगुना बॉल रूम दुसित थानी लगुना। यस, एंड द स्पेशलिटी इज बैठा गरबा। तो आप चाहे कितना भी आला बर्फी मोड में जाके हवा में उड़ने की कोशिश करें, पर नहीं हो सकता। यू विल हैव टू सिट, बिकॉज बैठा गरबा यही है। बिल्कुल, मुझे पता है। अगर टिकट चाहिए तो जल्दी जल्दी आपको sgs.org.sg नवरात्रि 2026 पर जाना होगा। लेकिन अगर घर बैठे, अगेन बैठे बैठे टिकट चाहिए, तो एक सवाल का जवाब दीजिए। बैठा गरबा में बैठा का मतलब क्या होता है? सिर्फ डांडिया स्टिक्स के साथ बैठ जाना, ऑप्शन ए, डांडिया स्टिक्स के साथ बैठ जाना, ऑप्शन बी, बैठ कर ताल और सिंगिंग के साथ गरबा, ऑप्शन सी, बस बैठ जाना। तीन ऑप्शंस हैं। सही जवाब दे दो 9151-8963 पर और आप बैठे बैठे टिकट ले जाओ। हाँ, आंसर बैठे बैठे फोन पे दो ना, उठना नहीं है। There was the answer in the... Yeah! सुन रहे हैं आप मुग्धा को, stay tuned.

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
1: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बन के रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
2: रात अकेली है।
3: जोश में रहो।
4: इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxon India, the Family Expo is back with its grand 43rd edition celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition standya, cultural entertainment and family fun. 16th to 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo Mall. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxon India, the Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxonindia.com.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: मुझे लगा था ना ये जो वीकेंड है सिंगापुर में सबसे ज्यादा ड्रामा F1 कार्स करेंगी, लेकिन हेज ने बिना टिकट के एंट्री मार लिया, ड्रामा लेकर आ गए। F1 एक्साइटमेंट जो है फुल ऑन है, लेकिन अगर हेज और ज्यादा वर्सन सिचुएशन में आता है तो FIA के अकॉर्डिंग आउटडोर एंटरटेनमेंट और कुछ एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्ट की जा सकती हैं। अभी के लिए देखो रेस एक्सपेक्टेड टू गो अहेड और कंडीशंस क्लोजली मॉनिटर हो रही हैं, है ना, मतलब टू गो अहेड वाला ही फिलहाल तो वही है। तो रेस का जो प्लान है वो तो ऑन है, एंटरटेनमेंट जो है वो स्केड्यूल पर थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में जा रहा है। वैसे देखो क्या है ना कि ये जो हमारा आला बर्फी है उसका मूड वही तो था, सिचुएशन परफेक्ट हो या ना हो मूड पूरा मस्त होगा, वो मूड खराब होने नहीं देता है, किसी भी तरह आपको आपके बैड मूड से निकाल ही लेगा। आला बर्फी है तो मजेदार तो होना ही है। फ्राइडे को हम भी बिल्कुल वही करेंगे, मूड अपना बिल्कुल खराब नहीं करेंगे, जो होगा अच्छे के लिए होगा। वो क्या कहते हैं, अगर आपके मन का ना हो तो और भी अच्छा, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा, है ना।
2: मटर गश्ती खुली सड़क में, तगड़ी तड़क भड़क में, ओले गिरे सुलगते से सुलग।
1: चलिए आला बर्फी मोड में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: गरम कड़ाही, भुनता हुआ बेसन, वो हल्की आंच पर घुलती हुई चाशनी।
1: क्यों, सोचते ही आया ना याद वो दिवाली वाला शाही स्वाद।
2: इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ। रिलिश करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज, ग्राम एंड गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर। नमकीन चार्ज टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड ट्रेजर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस। शाही महारानीज रॉयल मिठाई एंड नमकीन। अर्ली बर्ड प्राइसेस फ्रॉम $72 प्लस ऑनवर्ड्स अंटिल 11th अक्टूबर। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 6235-8840 और लॉग ऑन टू shahimaharani.com।
3: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
4: Namaste, behnor bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
1: It's a Masti Partner event.
2: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके, ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
3: हाय सिंगापुर, फ्राइडे है और फेस्टिव सीजन का मूड तो ऑलमोस्ट ऑन हो चुका है और हम जो है आला बर्फी मोड पे जा चुके हैं। थोड़ा इसको एक्स्ट्रा स्पार्कल ये जो गाना है लाइफ में ऐड करता है ना, ये जो मूड है ऐसा लगता है कि वाह जिंदगी कितनी ब्यूटीफुल है, स्पार्कल फ्लो हो रहे हैं, आसमान से मजा आता है। और जब स्पार्कल की बात आती है तो ज्वेलरी की बात आती है, और ज्वेलरी की बात आती है तो हाउ कैन आई इवन फॉरगेट जोया लुकास, बिकॉज जोया लुकास का फेस्टिव प्राइस प्रॉमिस जो है वो इतना इंटरेस्टिंग है कि मूड आला बर्फी हो जाता है। गोल्ड ज्वेलरी मेकिंग चार्जेस पे 1% ऑनवर्ड्स जो है वो वहां से शुरू हो रहे हैं और आप सिर्फ 10% एडवांस दे करके ज्वेलरी को लोएस्ट गोल्ड रेट पर प्री बुक कर सकते हैं। मतलब अगर गोल्ड रेट इन केस बढ़ता है, नो वरीज, आप सेफ हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, ज्वेलरी लुकास ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है। और अगर इन केस रेट गिरता है, यस, लोअर रेट का बेनिफिट आपको मिलेगा, तो यार ये तो कितनी मजेदार बात है। एंड पता है, अगर जोयालुकास मोबाइल ऐप से आप फर्स्ट टाइम बुकिंग करते हैं तो मालूम है क्या होगा, आपको 100 सिंगापुर डॉलर्स का एक डायमंड गिफ्ट वाउचर है वो मिलेगा। सो दिस होल ऑफर इज वैलिड टिल 7th of November 2026। प्लीज माइंड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई एवरीवेयर। तो फ्राइडे का मूड सिंपल है, यहाँ का मूड सिंपल है, थोड़ा म्यूजिक, थोड़ा शाइन, थोड़ा फेस्टिव एक्साइटमेंट, उसी प्लेफुल एनर्जी को कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल मूव फॉरवर्ड।
4: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।
4: तैयार हो जाइए, जब ढोल बजेगा डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा इट्स टाइम फॉर सिंगापुर। गुजराती सोसाइटी प्रेजेंट्स सिंगापुर्स ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Musti. Book now at sgs.org.sg/navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration. Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय सिंगापुर, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं मुग्धा को एंड दिस इज मस्ती हैंगआउट एंड दिस इज द बॉलीवुड आर। लेकिन आज का बॉलीवुड आर जो है ना वो उतना ज्यादा हैपनिंग और एंटरटेनिंग नहीं है, क्योंकि वी हैव लॉस्ट अ जेम ऑफ अ पर्सन, अ जेम ऑफ एन एक्टर, अमेजिंग इंसान और एक ऐसा शख्स जो अपने आप में पूरी की पूरी कहा जाए तो एक्टिंग बुक है, किताब। अगर आप उनकी एक्टिंग देखो तो आप सब सीख सकते हो। आपको वो पूरा स्कूल है एक्टिंग का अपने आप में, एक्चुअली है नहीं, थे। टॉकिंग अबाउट नाना पाटेकर जी। नाना पाटेकर जी लिफ्ट अस एट द एज ऑफ 75। आपको पता है नाना पाटेकर जी को याद करो तो सबसे पहले क्या याद आता है? उनकी आवाज, दैट इंटेंसिटी, वो डायलॉग डिलीवरी जहाँ पे कभी कभी एक लाइन पूरा सीन अपने आप अपने नाम कर लेती और आपको पता लग जाता क्या हो रहा है। आई मीन जस्ट सी द रेंज, परिंदा, क्रांतिवीर, अब तक 56, वेलकम, राजनीति, ओ माई गॉड, ऐसा लगता था आरक्षण, ऐसा लगता था नाना पाटेकर जी का नाम है ना इस मूवी में। इट्स वर्थ वॉचिंग, देयर समथिंग अमेजिंग टू गो एंड वॉच। नाना पाटेकर जी का रेंज वॉज टू गुड यार, मतलब जब वो खुद ही अपने आप में एक्टिंग की स्कूल बुक है तो मैं क्या ही करूं। सिनेमा का ना यही सबसे कमाल है और यही कमाल की बात है। कभी एक एक्टर ऐसा है जो लफ्जों से इतना कुछ कह जाता है और कई बार कहानी ऑलमोस्ट बिना लफ्जों के होती है लेकिन आपके दिल तक पहुंचती है। एंड दैट्स व्हाट वी हैव पिक्ड अप टुडे, इट्स बफी। बर्फी हमें यहाँ तक लेकर आई है आज, है ना। सो इन दिस आवर वी विल टॉक अबाउट बर्फी। और देखो ना, बर्फी की कितनी कमाल की बात है। बर्फी में कोई कुछ नहीं बोलता है, बर्फी में सिर्फ एक्सप्रेशंस और कम्युनिकेशन और इमोशन से पूरी फिल्म आगे बढ़ती है ना। रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा और इलियाना डिक्रूज एक ऐसी फिल्म में है जहाँ पे कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट जीरो वर्ड से हो रहा है, एक्सप्रेशंस बहुत हैं, जेस्चर्स बहुत हैं, मस्ती बहुत है, फीलिंग बहुत है, एंड दैट्स बर्फी। और फ्राइडे को ना हम बर्फी से वही बोरो करने वाले हैं। प्रॉब्लम्स अपनी जगह पे होंगी पर खुशियां और शरारत जो है ना वो हमेशा बचा के रखेंगे हम।
2: हम तुम चले टेढ़े मेरे से रस्तों पे नंगे पांव।
1: वेलकम टू दिस आवर, सेकंड आवर ऑफ बॉलीवुड। आप सुन रहे हैं मुग्धा को, स्टे ट्यून्ड।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: अच्छा, बर्फी की बात हो ही रही है तो बर्फी का जिक्र ना करें ऐसा कैसे चलेगा? मतलब बर्फी तो मिठाई का जिक्र ना करें तो कैसे चलेगा? ये तो बड़ा अनफेयर हुआ ना बर्फी के साथ। सो बॉलीवुड आवर में थोड़ा मीठा बर्फी डिस्कस करते हैं, I mean, मीठी मिठाई डिस्कस करते हैं। दिवाली स्वीटनेस अगर ऐड कर ले हम इस बॉलीवुड आवर में तो कितना मजा आ जाए। दिस दिवाली स्वीटनेस इज ब्रिंगिंग फॉर यू शाही महारानी दिवाली फेस्टिव कलेक्शन 2026। हर बार की तरह ये हमारा अपना मिठाई जो है ना शाही महारानी का, ये हमेशा खुशियां लेकर आते हैं। हैंड क्राफ्टेड मिठाइयां हैं, प्रीमियम सेवरीज, ब्यूटीफुल फेस्टिव गिफ्टिंग बॉक्सेस हैं यहाँ पे। एंड फ्लेवर्स में ट्रॉपिकल सनराइज, मैंगो सरप्राइज, मिल्क केक, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट, स्टफ्ड कैश्यू रोल, ओ माय गॉड, मोटा करने का पूरा प्लान है। एंड ग्राम एंड गुड डिलाइट है, मतलब गुड डिलाइट है एंड इट्स एक्चुअली गुड डिलाइट, डेट और नट बर्फी है। और ये सारी मिठाइयों के नाम सुन के मेरा दिल बर्फी बर्फी हो गया इस समय। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पता है क्या? अर्ली बर्ड ऑफर भी है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 11th अक्टूबर तक है जी। वैसे तो ये फेस्टिव कलेक्शन काफी लंबा चलेगा, नवंबर तक चलेगा, बट दिस अर्ली बर्ड ऑफर जो है ये सिर्फ और सिर्फ 11 अक्टूबर तक है। सेलिब्रेशन बॉक्सेस हैं $72, रॉयल सेवरी ट्रीट्स हैं $98+, रॉयल फेस्टिव बॉक्सेस हैं $108+, एंड ट्रेजर शुगर एंड स्पाइस बॉक्सेस हैं $148+। अर्ली बर्ड रेट्स पर जल्दी कर लीजिए, वरना ऐसा ना हो कि आप अर्ली बर्ड डिस्काउंट से चूक जाएं और फिर चिड़िया उड़ जाए। कलेक्शंस जो है वो 22 अक्टूबर से 9 नवंबर तक चलेंगे एंड मिनिमम 3 डे लीड टाइम जरूर दीजिएगा। आप ऑर्डर कर सकते हैं इनके shahimaharani.com पे या फिर इनके फोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, दैट इज 6235-8840। बर्फी स्क्रीन पे हो और दिवाली में असली मिठाई घर पे ना हो तो कैसे चलेगा, इसलिए दोनों जगह बर्फी है ना, कॉम्बो बढ़िया।

0: गरम कड़ाही, भुनता हुआ बेसन, वो हल्की आंच पर घुलती हुई चाशनी,
1: क्यों सोचते ही आया ना याद वो दिवाली वाला शाही स्वाद।
2: इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ। रिलिश करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज, ग्राम एंड गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर। नमकीन चार्ज टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड ट्रेजर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस। शाही महारानी रॉयल मिठाई एंड नमकीन। अर्ली बर्ड प्राइसेस फ्रॉम $72 प्लस ऑनवर्ड्स अंटिल 11th अक्टूबर। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 6235-8840 और लॉग ऑन टू shahimaharani.com।
3: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया अकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
4: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: तैयार हो जाइए, जब ढोल बजेगा डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा It's time for Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Musti. Book now at sgs.org.sg/Navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
1: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके, ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
2: बर्फी की दुनिया की एक बात मुझे बहुत पसंद है, अनएक्सपेक्टेड चीजें जो है ना वो कहानी को इंटरेस्टिंग बनाती है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी मुग्धा और ये है बर्फी वाला आर, जहाँ पे हम फ्राइडे वाइब जो है उसको बना के रखेंगे। मुझे पता आपके बहुत से प्लान है पर कोई बात नहीं, ये प्लान जो है ना ये बहुत ही अनप्लान था। बॉलीवुड ने फ्राइडे को एक बहुत ही प्रॉपर अनएक्सपेक्टेड कॉम्बो दिया है। पूछो कैसे, करीना कपूर खान ने एक बहुत ही मिस्ट्री हेलमेट पोस्ट डाला था। अब करीना हेलमेट कोई कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, क्या करने वाली है भाई, सिंगापुर में तो F1 पे भी बादल छा रहे हैं। व्हाट इज दिस? सो बेसिकली फॉर्मूला 1 चैंपियन जो है लैंडो नॉरिस के साथ एक ग्लोबल कोलैबोरेशन जो है वो कर रही है, एंड दैट्स व्हाई दिस वाज ट्रिक एंड टीज बाय करीना हेलमेट पोस्ट डाल करके। एंटरटेनमेंट और F1 मतलब बेबो का ग्लैम, ओह माय गॉड, एंड रेस ट्रैक की स्पीड, दोनों उफ आग लगा देंगे। प्रोजेक्ट की जो एग्जैक्ट डिटेल्स हैं वो अभी अंडर रैप्स ही हैं, ऑफिशियल रिवील अभी आना बाकी है। पर अब क्या, अब तो बेबो ने हेलमेट डाल दिया, अब तो गाड़ी दौड़ेगी है कि नहीं। पर क्यूरियोसिटी अपनी इंटैक्ट रखो, बेबो है वो कब क्या करेंगे, यू नेवर नो। वैसे ना फ्राइडे का मूड कुछ ऐसा होना चाहिए, सब कुछ इतना प्रेडिक्टेबल क्यों हो बेबी, हम कहाँ जा रहे हैं लास्ट मोमेंट पे बताएंगे हम आपको। ऐसा फ्राइडे फील होना चाहिए, क्यों प्लान करें पार्टी, चलो ना चलते हैं। और आपने कुछ प्लान बना रखा हो पर किसी को बताओ नहीं, ये भी कर सकते हो, छिपे हुए राज। बर्फी यही तो याद दिलाता है, थोड़ा सरप्राइज, थोड़ा मिस्चिफ, थोड़ा लाइफ को लाइटली लेना इज ऑल अबाउट बर्फी।
3: पानी दा रंग देख के, पानी दा रंग देख के।
2: और इसी वाइब के साथ बॉलीवुड आर में आगे बढ़ते हैं, स्टे कनेक्टेड।

0: गरम कड़ाही, भुनता हुआ बेसन, वो हल्की आंच पर घुलती हुई चाशनी,
1: क्यों सोचते ही आया ना याद वो दिवाली वाला शाही स्वाद।
2: इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ। रिलिश करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज, ग्राम एंड गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर। नमकीन चार्ज टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड ट्रेजर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस। शाही महारानीज रॉयल मिठाई एंड नमकीन। अर्ली बर्ड प्राइसेस फ्रॉम $72 प्लस ऑनवर्ड्स अंटिल 11th अक्टूबर। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 6235-8840 और लॉग ऑन टू शाही महारानी.com।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक। बर्फी देखिए आपने, पता है बर्फी देखते हुए एक चीज बार बार फील होती है, खुशी को ना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है, है? अरे नहीं नहीं, तुम वाली खुशी नहीं, तुम कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो, तुम बहुत अच्छी हो। मैं तो लाइफ वाली खुशी की बात कर रही हूँ। हाँ, हैप्पीनेस, उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। कभी लोग, कभी म्यूजिक, कभी थोड़ी मस्ती, बस वही काफी होता है मूड बदलने के लिए। एंड फेस्टिव सीजन में ना सिंगापुर में वैसे भी रीजंस कम नहीं है फेस्टिव मूड अपडेट करने के। जैक सलाम इंडिया द फैमिली एक्सपो इज कमिंग अपना 43rd ग्रैंड एडिशन लेकर के, और सोने पर सुहागा है ये उनकी 28th यानी 20वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है। ओ माय गॉड, 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक पूरे 10 दिन दीपावली डिस्काउंट सेल एट सिंगापुर एक्सपो हॉल 9। एंट्री फ्री है भाई, भागो। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जयपुर, कोलकाता, हैदराबाद, कश्मीर, पंजाब, सब जगह से लोग आ रहे हैं आपको आपके मन की शॉपिंग कराने। दे आर ब्रिंगिंग ऑल द फैशन ज्वेलरी, फेस्टिव प्रोडक्ट, लाइफस्टाइल, सब कुछ यहाँ पे अंडर वन रूफ है। फैमिली के लिए रंगोली, कैरम, चेस, कुकिंग कॉम्पिटिशन है एंड डांडिया है, जैक कम्युनिटी अवार्ड है, दीपावली डिनर है, ओ माई गॉड ये भी है, मतलब ये जो इन द सेंस दुबई, लंदन, पेरिस, रोम और न्यूयॉर्क के फ्री है टिकट्स। क्या बात कर रहे हो, एंट्री फ्री और टिकट्स फ्री, हाय हाय क्या बात है, मैं तो जा रही हूँ। देखो बर्फी का फंडा याद रखो, खुशी को जगह दो, थोड़ी जगह दो, वो बाकी अपने आप खुद बना लेगी। वो वाली खुशी नहीं, ये वाली हैप्पीनेस वाली खुशी, उस खुशी के तो पूरी जगह है। तो बर्फी का फंडा ध्यान में रखो, जैक सलाम इंडिया फैमिली एक्सपो की डेट याद रखो 16 से 25 अक्टूबर, 10 दिन का दीपावली डिस्काउंट सेल भाई, मिस नहीं करना है।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: Hi everybody, this is me Mugdha और आप मुझे सुन रहे हैं मस्ती हैंगआउट पर। शो के दौरान द लास्ट आवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यू नो दिस आवर हम बात करने वाले हैं कैसे गाने की, जो की बर्फी मूवी का सॉन्ग है। इट्स वेरी प्लेफुल, क्यूट है, रणबीर प्रियंका की मस्ती है, द केमिस्ट्री, नॉर्मल तरीके से चीज करनी क्यों है जब हमारे पास एनर्जी कुछ अलग तरीके से करने की है। आशियाना इज द सॉन्ग, और ये जो अगला बंदा है ना, शायद उसकी लाइफ की फिलोसफी कुछ ऐसी ही है। यू नो दिस आवर, ओह माय गॉड, ऐसा भी होता है वाली स्टोरीज हमारे पास है। बर्फी देखे मुझे भी लगा था ओह माय गॉड ऐसा भी होता है। फिलहाल यहाँ जो देखा ना उसके बाद लगा ऐसा भी होता है। एक रेज्यूमे ऑनलाइन बहुत वायरल हो रहा है, मेरे पास क्यों नहीं आया वायरल हुआ तो। एनीवे आधा प्रिंटेड है तभी नहीं आया था। अब क्या हुआ था, ऊपर करियर ऑब्जेक्टिव, थोड़ी सी फोटो है और नीचे पूरा ब्लैंक स्पेस, एक लाइन है, हायर मी टू अनलॉक माय फुल पोटेंशियल, एजुकेशन नाइ, एक्सपीरियंस नाइ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स नाइ, वो भी नहीं। इंटरनेट इज डिवाइडेड, कुछ लोग कह रहे हैं जीनियस मार्केटिंग और कुछ कह रहे हैं भाई पहले प्रिंटर चेक कर लो, नहीं पहला वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर है। ऑनेस्टली इंटरव्यू मिले या ना मिले, अटेंशन तो फुल मिल गया बॉस को। मुझे ऐसा लग रहा है हम सब इंस्टाग्राम की दुनिया में जी रहे हैं। हर कोई यही कहता है ये बात जानी है कमेंट करो, ये बात जानी है लिंक में कमेंट लिखो, ये बात जानी है कमेंट में डीएम लिखो, ये बात जानी है डीएम में लिंक लिखो। ओ माय गॉड, हम स्क्रीनशॉट लेके भी तो पता लगा सकते हैं कि वो क्या है, मतलब नॉट ऑफ दैट रिज्यूमे, जनरली बता रही हूँ। पूरी दुनिया ऐसे ही जी रही है, कमेंट में लिंक लिखो, लिंक में डीएम लिखो, डीएम में लिंक लिखो, लिंक में कमेंट। ओ माय गॉड, कोई पूरी बात बताने को तैयार ही नहीं है। तो इस बंदे ने क्या गलत किया, इसको हायर करो, फुल पोटेंशियल जान लो, काम खत्म। जीनियस हो तुम बेटा, जीनियस हो।

0: प्रेडिक्टेबल कम है, प्लेफुल ज्यादा है, बिल्कुल हमारे इस गाने की तरह फ्रॉम बफी।
1: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

0: गरम कड़ाही, भुनता हुआ बेसन, वो हल्की आंच पर घुलती हुई चाशनी।
1: क्यों, सोचते ही आया ना याद वो दिवाली वाला शाही स्वाद।
2: इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ। रिलिश करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज, ग्राम एंड गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर। नमकीन चार्ज टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड ट्रेजर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस। शाही महारानी रॉयल मिठाई एंड नमकीन। Early bird prices from $72 plus onwards until 11th October. For more details, call 6235-8840 or log on to shahimaharani.com. Happy Diwali.
3: Ajay, don't mind, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता? गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
4: बिल्कुल आती है, सुनाओ।
3: सुना।
4: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा न लगे। आदाब।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते हैं, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके, ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
2: Oh my God, easy breezy, Ashiana mood और high life का exhibition, feel good, beautiful Friday, exactly यही तो चाहिए। This is me Mugdha. क्या हो गया मुझे अचानक? बफी मूड में आ गई हूँ। फेस्टिव सीजन में ना अगर मूड के साथ वार्डरोब थोड़ा अपग्रेड हो जाए तो आई हाय और क्या चाहिए। High life exhibition सिंगापुर यही तो लेकर आ रहा है 13th and 14th October, सुबह 10 से लेकर रात के 8 बजे तक, हॉलीडे इन सिंगापुर ऑर्चर्ड सिटी सेंटर में। 75 प्लस लीडिंग इंडियन डिजाइनर्स एक ही रूफ के नीचे, आप समझ रहे हैं बात की इंटेंसिटी। 75 प्लस लीडिंग डिजाइनर्स, और ये कहीं छुपे हुए नहीं होंगे, आप इनसे डायरेक्टली मिल सकते हो, आप इनसे डिस्कशन कर सकते हो, आप इनसे अपने आउटफिट के लिए पूछ सकते हो, स्टाइलिंग एडवाइस ले सकते हो, पर्सनलाइजेशन भी डिस्कस कर सकते हो। क्या बच्चे की जान ले लोगे है? उसके अलावा फेस्टिव आउटफिट, ब्राइडल वेयर, ज्वेलरी, एक्सेसरीज, होम डेकोर, लाइफस्टाइल पीसेस। क्या कह रहे हो, 13 अक्टूबर इतना दूर क्यों है? थोड़ा पास आओ ना, आओ ना, गले लगाओ ना, जल्दी से आओ ना, 13 अक्टूबर मुझे जाना है। एंड द बेस्ट पार्ट इज स्टिल बाकी, सिर्फ शॉपिंग नहीं है। सो बेसिकली कैजुअल एलिगेंस से लेके फुल सेलिब्रेशन लुक सब यहाँ पे डिस्कस हो जाएगा। पतियों जल्दी जल्दी पहुंच जाओ अपनी बीवियों को लेकर के, खुश हो जाएंगी, बढ़िया बढ़िया खाना बनाएंगी, मतलब आपका दिन अच्छा हो जाएगा। सॉरी। तो फैमिली फ्रेंड्स प्लान बना लो, आशियाना का फील प्लेलिस्ट में आ चुका है, फेस्टिव फील में हाई लाइफ ऐड कर लो, 13th and 14th October जाना जरूर।

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
1: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे। ट्यून इन टू
1: रात।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाँ शियाना, इतना प्यारा गाना है ना बर्फी का। आई नो, कितने क्यूट लगे ना इसमें रणबीर और प्रियंका। सच में यार, मतलब आई नेवर एक्सपेक्टेड ये पॉइंट तक एक्टिंग लेकर जा सकती है प्रियंका। मतलब आपको लगता है ना किसी किसी का कि हाँ ये तो कर सकता है पर ये नहीं कर सकता, ये कर सकता पर वो तो नहीं कर सकता, बट बर्फी में प्रियंका रेंज इज अमेजिंग। बाय गॉड, प्रियंका जब आती है ना स्क्रीन पे, व्हाट प्रियंका, एंड शी वाज अमेजिंग, एंड दिस सॉन्ग, ओह इट्स टू क्यूट। वाइब भी बहुत प्यारी है, इजी है, प्लेफुल है ना। लेकिन बॉस, इजी का मतलब मैराथन के बीच में बाइसिकल पकड़ के, मतलब भागना नहीं होता है, बाइसिकल पे बैठ के नहीं जाना है आपको। एंड वो भी तब जब आप एक इन्फ्लुएंसर हैं और वो भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, आपको हायर किया गया, आपको पैसे मिले उस बात के, क्या कर रहे हो यार। बर्लिन मैराथन में एक चाइनीज फिटनेस इन्फ्लुएंसर थी, रेस कंप्लीट करके ना अपना पर्सनल बेस्ट सेलिब्रेट किया उन्होंने, 4 hours 53 minutes। उसके बाद कुछ फोटो सामने आई, रेस का लास्ट पार्ट है ना, वो बाइसिकल पे राइड लेती हुई नजर आई। मतलब रेस बाकियों के लिए खत्म हुई पर उनकी तो बाइक राइड पे खत्म हुई। हाँ, अब कोइंसिडेंस देखो, फास्टेस्ट 5 kilometer स्ट्रेच भी वही था जहाँ पे बाइक वाली फोटोज रिपोर्ट हुई। बाद में उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि तबीयत खराब हो गई थी, एंड दैट्स व्हाई शी टुक द राइड, अपोलॉजी दी। तो भाई अगर आपने एडमिट किया तो आप मना कर दे देंगे, मैं ये नहीं लूंगी, रेस कम्प्लीट करने का अवार्ड है, जो भी मिलता है वो नहीं लेना मुझे। इन्हों स्पॉन्सर्स ने उनकी पार्टनरशिप एंड कर दी। आप एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो और आप ये इन्फ्लुएंस कर रहे हो लोगों को, गलत बात है। खैर, आज की दुनिया में क्या ही बोले। आई हैव अ फ्राइडे टेक अवे फॉर यू। शॉर्टकट लेना है तो ऑफिस से घर आते वक्त लेना, मैराथन में मत लेना, और वो भी तब जब आप इन्फ्लुएंसर हो और दुनिया आपको देख रही है और आपको उस काम के पैसे मिले हैं और आपकी कोई स्पॉन्सरशिप चल रही है। तो वैसे यार, चीटिंग तो कहीं भी अच्छी नहीं होती है ना। नहीं, घर आते वक्त ले सकते हो शॉर्टकट, वो चीटिंग चलेगी, कहीं तो चीट कोच काम भी आते हैं ना। चलो हम शॉर्टकट नहीं लेंगे, मूड को सीधा आशियाना वाली इजी फील में रखेंगे। वापस आ रहे हैं एक ब्रेक के बाद।

0: गरम कड़ाही, भुनता हुआ बेसन, वो हल्की आंच पर घुलती हुई चाशनी।
1: क्यों, सोचते ही आया ना याद वो दिवाली वाला शाही स्वाद।
2: इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ। रिलिश करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज, ग्राम एंड गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर। नमकीन चार्ज टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड ट्रेजर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस। शाही महारानीज रॉयल मिठाई एंड नमकीन। अर्ली बर्ड प्राइसेस फ्रॉम $72 प्लस ऑनवर्ड्स अंटिल 11th अक्टूबर। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 6235-8840 और लॉग ऑन टू shahimaharani.com।
3: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके, ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
4: सिंगापुर, बस आज की मस्ती यहीं रैप अप करते हैं और उस रैप अप का रोल अपने पॉकेट में डाल लेंगे हम। 3 घंटे काफी कुछ लेकर आए हमारे लिए, थोड़ा बॉलीवुड, फेस्टिव एनर्जी, बहुत अमेजिंग अपडेट्स, कुछ अजीब पर मजेदार कहानियां और बीच में बफी, क्यों आशियाना गाने बातें एंड द बफी मोड हल्का फुल्का चलता रहा। फ्राइडे का ना शायद यही काम है, पूरे हफ्ते का लोड एकदम गायब तो देखो नहीं हो सकता है, पर उसके बीच में थोड़ी हंसी, थोड़ा म्यूजिक, गुड कंपनी अगर आपको मिल जाए, और क्या चाहिए किसी को अपनी लाइफ में। दिस इज मी मुग्धा और अब हम चले अपने आशियाने। अपनी इवनिंग, अपनी नाइट अच्छी रखिए, वीकेंड को ओवर प्लान मत करिए, ओवर बर्डन मत करिए, कुछ जगहों पे सरप्राइज के लिए जगह छोड़ दीजिए। मुलाकात करेंगे आपसे मंडे को, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव के साथ बने रहिए, फिर मिलेंगे नई बातों के साथ, नई मस्ती के साथ, और हाँ कुछ तो आने वाला है, समथिंग दैट्स वेरी स्पेशल। क्या क्या क्या आप पूछ रहे हो, क्या आप कैसे बोल सकते हो, भूल गए, कोई बात, याद आ जाएगा, जस्ट वेट एंड वॉच।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: नाचने का मन है?
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: It's the best of Bollywood playing on Radio Musti 24/7 Live. Have a musti bhara weekend.

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Masti Madness on Radio Masti 24/7.
2: The perfect recipe for you to unwind. Masti Weekends only on Radio Masti 24/7 Live.

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: सिर्फ वीकेंड वॉज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वॉज अ गर्ल, इफ वीकेंड वॉज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वॉज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.
2: The perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Mercy 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। हैव अ मस्ती भरा वीकेंड।

दो ट्रैक से फास्ट ट्रैक लाने में निकाल देता है, पर ढाई घंटे में मेरी किस्मत ऐसे स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक पर आ जाएगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सजा मजा बन जाएगी, ये भी कभी सोचा नहीं था।

0: संजना, संजना।
1: I'm sorry, मैंने आपको पहचाना नहीं।
2: तेरे लबों पे इनकार है, मेरे लबों पे इकरार है। हाँ यही तो है सब निशानियां,

दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो, तो जिंदा हो तुम। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो, तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समां देखिए निकाल। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो, तो जिंदा हो तुम। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल।

कहा दैया, ताय उठाय लियो गिर नक पर बंसी बजावत देन चलैया, जगके मोहन मन में माये नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा।

0: morning. Good morning. Good morning.
1: Good morning.
2: बेटा।
3: Yes, papa.
2: बरखोरदार।
0: Yes, daddy.
2: अपनी भाषा में बोलो।
0: अरे हाँ हाँ, I'm sorry.
4: नमस्ते नमस्ते ओ पिताजी।
5: नमस्ते।
4: जय हिंद ओ पिताजी।
5: जय हिंद।
4: नमस्ते नमस्ते
0: है सबको।
1: नमस्ते बाबू।
4: नमस्ते
0: नमस्ते नमस्ते नमस्ते, नमस्ते।

0: खुशियाँ ही खुशियाँ लाई है। नमस्ते नमस्ते ओ पिताजी,
1: नमस्ते।
0: जय हिंद ओ पिताजी,
1: जय हिंद।
0: नमस्ते नमस्ते है सबको, नमस्ते नमस्ते नमस्ते।

0: रात अकेली है,
1: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं।
2: जोश में रहो।
3: क्या बात है,
4: नशा ये प्यार।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.
7: Oh, welcome, Aji, apna hi garaj hai. Ah, trucka wala geet hai ji.

0: लटकी लटकी
1: बोल पेट्रोल ते पवाए नहीं
2: कोई गल नहीं साड़ी गड्डी ते गुडवेल नाल चलती है
3: Perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
2: चेक इट आउट
3: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव

की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 live fan. It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड। मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: कुछ पुरानी धुनें, कुछ भूली बिसरी यादें,
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान,
0: कोई आवाज, कोई साज। सिनेमा की दुनिया के किस्से, रुलाते हंसाते उदासी भरे खिलखिलाते किस्से, समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से।
2: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: The strongest people are those who win battles we know nothing about. Radio Masti 24/7 supports World Mental Health Day.
1: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। योर डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया, मस्ती 90s मिक्सटेप विद आपकी 90s वाली अंतरा, थर्सडेज 11 AM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।